0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के
1: संक्षिप्त समाचार। आपसे तीना नमस्कार।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। महंगाई का असर अभी भी मॉरिशस के लोगों के बजट पर बना हुआ है। इस साल मार्च से जून के बीच कई जरूरी सामान और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। रोटी, घरेलू गैस, बिजली और ईंधन उन चीज़ों में शामिल है जिनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने मार्च से जून के बीच 14 चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और केवल 2 चीज़ों की कीमतों में कमी दर्ज की है। कैबिनेट ने मॉरिशस और भारत के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA में बदलाव के प्रोटोकॉल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है कि 2 बार टैक्स लगने की समस्या को खत्म किया जाए और टैक्स एग्रीमेंट का गलत फायदा न उठाया जा सके। भारत के अधिकारियों के नए स्पष्टीकरण के बाद मॉरिशस ने इस प्रोटोकॉल को मंजूरी देने का फैसला लिया है।

बगातेल में नए अमरीकी दूतावास का निर्माण काम 62% पूरा हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जिसकी लागत 300 मिलियन डॉलर यानी लगभग 14 बिलियन रुपये है, दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका के अफ्रीकन अफेयर्स के लिए

0: सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला करने का दावा किया है। ये कार्रवाई ईरान में कई स्थानों पर रात भर हुए अमरीकी हमलों के जवाब में की गई है, जिनमें कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है। और अंत में मौसम का हाल।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं. हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं. अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता. और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है. सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ये मनोरंजन रेडियो की उर्दू नशरियात है. मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली. सबाल खैर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. अंजू तकनीकी मदद दे रही हैं. आज आपकी खिदमत में चंद कलिमात खैर पेश करने जा रहे हैं. आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने जा रहे हैं. बाग़ौर व अदब समात फरमाएं. बेहतरीन बात अल्लाह की किताब कुरान मजीद है.

जिक्र करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के काम का इरादा करते हुए इंशा अल्लाह कहते हैं यानी अगर अल्लाह ने चाहा। काम का इरादा कर लिया हो तो तवक्कल तो अल्लाह कहते हैं यानी मैंने भरोसा किया अल्लाह पर। शुक्र अदा करते हुए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है। किसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं जज़ाकल्ला यानी अल्लाह आपको जज़ा दे।

कोई नेमत देखें तो माशा अल्लाह कहें, यानी जैसा अल्लाह ने चाहा। किसी के पास नेमत देखकर कहते हैं बारकल्लाह, यानी अल्लाह मुबारक करे। तकलीफ़ महसूस हो तो हस्बी अल्लाह कहते हैं, यानी मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। ऊपर चढ़ते हुए कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह ही बड़ा है। नीचे उतरते हुए कहते हैं सुबहानअल्लाह, यानी अल्लाह पाक है।

पनाह में आते हैं। गुनाह हो जाए तो कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह, यानी मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह से। कोई आफत देखें तो माज़ अल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह की पनाह।

0: कसा काय मंडळी
1: द बेस्ट सॉंग्स ऑन द रेडियो. दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन
2: आर एम फ्री मनोरंजन रेडियो.

भक्ति में शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, परमपिता परमात्मा ने संसार में परोपकार का संदेश देते हुए हमें भेजा है ताकि हम सदैव परोपकार में ही रत रहें, और यह संदेश हमें प्रकृति के माध्यम से मिलता है। मानव सर्वप्रथम प्रकृति की गोद में सांस लेता है, प्रकृति की गोद में ही खेलता कूदता हुआ बड़ा होता है और अंतिम अवस्था तक अपने जीवन में प्रकृति के अंग प्रत्यंग से आत्मिक तृप्ति का अनुभव करता है। यही कारण है कि प्रकृति के विविध कोमल सुंदर रूपों के आकर्षण ने मानव को सदैव प्रेरणा दी है। इसलिए प्रकृति में सर्वव्यापी परमात्मा की सत्ता का वास है और हमें प्रकृति से उदाहरण लेकर सत्कर्मों को अपनाना चाहिए।

श्रोताओं, सूर्य की प्रदत्त भीषण धूप स्वयं गर्मी में रहकर दूसरों को छाया प्रदान करता है और अपना सर्वस्व दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित कर मनुष्य को सत्पुरुषों जैसा आचरण करने की राह दर्शाता है।

श्रोताओं, ईश्वर का चिंतन करने से मानसिक उन्नति होती है। ईश्वर का चिंतन करने से उनके दिव्य गुण मनुष्य में अपने आप विकसित होने लगते हैं। अपने चिंताओं का परित्याग कर हमें अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। परमात्मा की नित्य स्तुति करने से मनुष्य संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है।

श्रोताओ, मनुष्य को अज्ञान ही भयकारक है। अज्ञान के नाश से मनुष्य का भय भी नाश हो जाता है। त्रिविध दुख निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। अविनाशी परमपिता परमेश्वर की सदा भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते रहने से साधक उस अनादि अनंत सर्वव्यापी की कृपा का पात्र अवश्य बनता है।

श्रोताओं, दुखों से निवृत्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है। मिथ्या ज्ञान ही मनुष्य का रोग है, जिसके नाश से मनुष्य शांति सुख को प्राप्त कर सकता है। और इस रोग की औषधि सिवाय ईश्वर की साधना में लीन एवं आत्मचिंतन के दूसरी नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने स्वरूप और स्वभाव को न जान लें और अपने अभ्यष्ट आनंद के आश्रय को न समझ लें, तब तक मनुष्य के दुखों की निवृत्ति का होना असंभव है।

भक्त को ईश्वर द्वारा प्रीतिपूर्वक साधना में लीन रहने से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। भक्त को यह तृप्ति मिलती है कि वह शांति से जी सकता है।

श्रोताओ, जब प्राणी अपनी प्रकृति और ईश्वर के गुणों का ठीक ठीक निश्चय कर लेता है, तब वह हिताहित को समझकर अपने कर्मों का पालन ठीक से कर पाता है। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

热闹过后，让我们静一静心，来一首充满人生态度的金曲，由张国荣带来的《沉默是金》。

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने एजुकेशन कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रमिसेस रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में निजी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल साथ लाया जा सकेगा, लेकिन उसे साइलेंट मोड में रखकर सुरक्षित रखना होगा। केवल स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर या शिक्षक की अनुमति से पढ़ाई के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा। और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी विद्यार्थियों की मौजूदगी में निजी मोबाइल का उपयोग करने से बचना होगा, सिवाय आधिकारिक या शैक्षिक कार्यों के। और बार बार नियम तोड़ने पर अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और जब्त किया गया मोबाइल वापस लेने के लिए उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। ब्रसल्स के दौरे पर गए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने गुरुवार को यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोश सेफकोविक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अगले साल यूरोप मॉरिशस बिजनेस फोरम आयोजित करने पर सहमति जताई, ताकि आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा अफ्रीका, कैरेबियन और पैसिफिक देशों के संगठन की मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान मॉरिशस के विदेश मंत्री को अपने समकक्षों का समर्थन मिला। ये समर्थन यूके द्वारा कुछ खाद्य उत्पादों पर दी जाने वाली शुल्क रियायतों को निलंबित करने के फैसले के खिलाफ मिला। ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन इस शनिवार को फ्लैग के भुनो चोंग हॉस्पिटल में अपना छठा केंद्र शुरू कर रहा है। इसका नाम शहाल जिन तुसैन ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर रखा गया है। ये केंद्र शहाल जिन तुसैन को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है, जिनका निधन ब्रेस्ट कैंसर के कारण हुआ था। इस नए केंद्र में कई तरह की सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें हर सप्ताह सामान्य चिकित्सक से परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता और मरीजों के लिए विक उपलब्ध कराना भी शामिल है। विदेश में अमरीका और ईरान के बीच आठवें दिन सैन्य टकराव नागरिक ठिकानों तक पहुंच गया है, जिसमें अमरीका ने ईरान के पुलों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। कोंकारोल रिवियरा क्रियोल में 55 साल के 55 साल के श्री सुनील तुलसिया जो सुपुप नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर कोंकारोल रिवियरा क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो में बकिश मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Time check, दिन के 12:04 हुए हैं।
5: सुहाना सफर।
0: हेलो दोस्तों, हेलो म्यूजिक लवर्स, योर म्यूजिक पार्टनर अनीता यहाँ पर हाजिर हो गई है आप लोगों के खिदमत के लिए। वेल दोस्तों, अभी आप लोग जो हैं जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर और सुहाना सफर कार्यक्रम द्वारा आप लोगों की पसंद के गाने होंगे, तो जरूर जो हैं टून ऑन योर फेवरेट शो अभी से लेकर 2 बजे तक। वेल दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग जो हैं ठीक ठाक हैं और आप लोगों के मूड्स को अपलिफ्ट करने के लिए ऑफ कोर्स हमारे गाने हैं, हम हैं।

यहाँ पर। तो चलिए इस म्यूजिकल सफर का आगाज करते हैं 80s के एक गाने के साथ, 80s के गाने के साथ हम यह कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। एंड माय एवरग्रीन एंड फेवरेट सॉन्ग कोरा कागज, फिल्म आराधना 1970।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, कितने दशक बीत गए फिर भी इस गाने में जो ताजगी है आज भी बरकरार है। यह इसलिए क्योंकि इट्स द मैजिक ऑफ किशोर दयान लता जी। तो चलिए इसी प्रकार के गाने हम बजवाएंगे आप लोगों के लिए। और एक अगला सा प्यारा गाना आ रहा है यहाँ पर, मेरे सजना। काफी लोगों को पसंद है ये गाना, हमें पता है, तो चलिए इसका भी आनंद लेते हैं।
2: मैंने कुछ खोया है

रहती है। और 12:15 हुए हैं, सुहाना सफर कार्यक्रम जारी है अनीता के साथ, और यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और फ्लक्स से निर्मला जी है, और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म उपकार का गाना, ऑफ कोर्स हर खुशी वो हो वहाँ जहाँ आप हैं। तो चलिए इस गाने को हम आपके लिए डेडिकेट करते हैं।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: फ्रेंड्स, किसी को खास फील कराना है एंड व्हाई नॉट खुद को खास फील कराना हो। ऑफ कोर्स जरिया है रेडियो मनोरंजन। प्लीज डू सेंड अस योर मैसेजेस ऑन 5250-6200 पर, या फिर आप फोन कॉल्स भी कर सकते हैं 4028070 पर, और कीजिए खुद को खास या फिर किसी खास को खास। और यहाँ पर जी माला जी जो है रिव्या जुरांप से साथ दे रही हैं और कहती हैं कि आज आप की नाती आपके नाती कविश का जन्मदिन है और वे 7 वर्ष के हो गए हैं, और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सत्यम की ओर से। शिव है, मामा किरण है, केविन है, कवि है, कनील है, साथ ही साथ है प्यारी दादी माला की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी बर्थडे टू यू ऑफ कोर्स। एंड

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे।

0: इसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
1: You're listening to RM3 Radio, मन

0: खाना सफर खाना सफर
1: जी दोस्तों, यहाँ पर कल्याणी जी साथ दे रही हैं ट्रियोले से और आपकी पसंद है आज फिल्म ये वादा रहा का गाना। ऑफ कोर्स यह गाना जाएगा आपकी चार बेटियों के नाम, श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति विरेन है, छोटा नाती नजियांश है, दुआऊ परिवार है, सभी म्यूजिक लवर्स के नाम और हमारी टीम के लिए थैंक यू जी। तो चलिए ऑफ कोर्स यहाँ प्यारा सा गाना हम गुनगुनाते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर गायत्री जी जो हैं पिची वेजरे से जुड़ गई हैं, और आपकी मांग है फिल्म इज्जत का गाना, और यही गाना जो आएगा ऑफ कोर्स भाभी मीरा के नाम, उनकी बेटियाँ हैं गिरीशाम मेधा और कटरबोन की बहन अमृता है, उनकी बेटियाँ हैं नेहा, शीति, दिव्या, बेटे सुधीर, कमलेश, बहु सुधा, और उन सभी लोगों के नाम जो इस गाने को पसंद करते हैं म्यूजिकल लवर्स के नाम। तो चलिए यह गाना सुनते हैं, और लता जी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर श्यामा जी जुड़ गई हैं गांगुप से और आपकी पसंद है फिल्म जब याद किसी की आती है। ऑफ कोर्स आपका कहना है कि सावन का महीना आने वाला है एंड यू लाइक सावन के सॉन्ग्स एंड ऑल, तो यह गाना बेशक आपके नाम और साथ ही साथ आपके भाई जयप्रकाश के नाम, भाभी हैं नम्रता, युधिष केशव नेफ्यूज़ हैं और साथ ही साथ आपकी सहेलियाँ हैं वीना हम्फल हैं और विश्वानी दुखी जी हैं, नंदिनी ओकलू जी हैं, उन सब के नाम यहाँ गाना जाता है। तो चलिए लता जी की आवाज़।

जी दोस्तों, यहाँ पर जो है माधुरी जी साथ दे रही है और आप कहती है हेलो जी ब्यूटीफुल लेडी, होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू मैम, आई एम डूइंग वेल एंड होप यू टू यू आर डूइंग वेल। और आपकी फरमाइश है फिल्म इंतकाम का गाना लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में, तुम हमारे लिए।

दोस्तों, कहा गया है कि जो चीज़ आज तुम्हें परेशान कर रही है, कुछ समय बाद उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। परेशानियों से भागना कोई रास्ता नहीं है, उनका सामना करना ही असली जीवन है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका खुद पर भरोसा है, इसे कभी टूटने मत दीजिएगा। हर रोज खुद को कल से बेहतर बनाइए, यही जीवन का सबसे सच्चा नियम है। मन में कड़वाहट रखना जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ा सुख है। और यहाँ पर पिछली वर्ष से अनीता जी साथ दे रही हैं, और आपकी मांग है फिल्म यहूदी का गाना, और यही गाना जाएगा आपकी तीन बेटियों के नाम, शीतल, काजल, दीक्षा, पति बलदेव है और पूरे जड़ी परिवार ऑफ पिछली वर्ष।

जी दोस्तों, ब्रह्म स्थान से उषा जी साथ दे रही हैं और आप जो हैं आपको फिल्म मेरे सजना का गाना काफ़ी पसंद आया, थैंक यू जी इसके लिए। और अभी आपकी पसंद है फिल्म आनंद का गाना मन्ना दे की आवाज़ में, और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे समाचारों की ओर और उसके बाद कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपको नमस्कार याचना
1: नमस्कार हंसिनी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार ब्रेस्ट कैंसर के एसोसिएशन ने शनिवार को फ्लैग के

0: बुइनु चोंग अस्पताल में अपना छठा केंद्र शुरू कर रहा है। इसका नाम जेराल्डिन टुसें ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर रखा गया है। ये केंद्र जेराल्डिन टुसें को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है, जिनका निधन ब्रेस्ट कैंसर के कारण हुआ था। इस नए केंद्र में कई तरह की सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें हर सप्ताह सामान्य चिकित्सक से परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता और मरीजों के लिए विग उपलब्ध कराना शामिल है। कैबिनेट ने एजुकेशन कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रेमिसेस रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में निजी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल साथ लाया जा सकेगा, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखकर सुरक्षित रखना होगा। केवल स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर या शिक्षक की अनुमति के साथ पढ़ाई के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी विद्यार्थियों की मौजूदगी में निजी मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचना होगा, सिवाय आधिकारिक यानी औपचारिक या शैक्षिक कार्यों के लिए। बार बार नियम तोड़ने पर अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और जब्त किया गया मोबाइल वापस लेने के लिए उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। विदेशी समाचारों में, जब से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो चुका है, तब से अमरीका ने लगातार सातवें दिन ईरान पर घातक हमले किए। ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर ऊर्जा और पानी के डिस्टिलेशन प्लांट्स को। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Chok samachar sunye, konkoral rivière des créoles mais, konkoral rivière des créoles mais. 55 साल के 55 years old के श्री सुनील तुलसिया जो सुपब के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2:30 बजे उनके मकान कोंकोराल रिविया दे क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि तोंबो में पर शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। पेटी पाके मोंटाइ ब्लांश में 68 साल के 68 years old के जनाब बाई इस्लाम बहादुर जो इस्लाम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दोपहर 2:30 बजे उनके मकान पेटीपा के मोंटाइ ब्लांश से उठाकर दफनाने के लिए मोंटाइ ब्लांश का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: सुहाना सफर।
0: यस दोस्तों, वेलकम अगेन टू सुहाना सफर कार्यक्रम ऑन रेडियो मनोरंजन अनीता के साथ। यहाँ पर 1:04 हुए हैं और आपके मैसेजेस काफी हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ ही देर में। इतना सारा प्यार, अपने अपनापन दिखाने के लिए थैंक यू सभी लोग।

मोताई ब्लॉट से नवीन जी साथ दे रहे हैं और हमें पता है कि आप जो हैं आशा जी के बहुत बड़े फैन हैं और इसलिए हमेशा उनके गाने मांगते रहते हैं, तो चलिए यह गाना आपके नाम।

थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग नवीन जी। और यहाँ पर फिका फ्लैक से अनीता जी का मैसेज आया और आप कहती हैं गुड आफ्टरनून जी, आप बहुत प्यारे प्यारे गाने हमेशा की तरह यहाँ पर बजवा रहे हैं, थैंक यू इसके लिए जी। और आप कहती है कि आपकी सहेली इंदिरा, उसके पति सिनंद, बहन माला और बेटी रोशनी जो है, वे सब जो हैं सात समुंदर पार करके अपने बेटे के यहाँ हॉलीडे विदेश जा रहे हैं और उनके नाम आप

फिल्म विश्वात्मा का गाना मांग रही है. एंड हैप्पी सैटरडे टू एवरीवन एंड मनोरंजन टीम, थैंक यू इसके लिए जी. साथ ही साथ आप कहती हैं कि आप जो हैं पका रही हैं, देयर इज़ ए फैमिली टुगेदर यहाँ पर, और जो हैं आप जो हैं अष्टपाद पका रही है. तो जो लोग हमें सुन रहे हैं हमें ज़रूर बताएं मैसेज के ज़रिए कि अष्टपाद क्या है.

जी दोस्तों, इस गाने की मांग की है हरि जी ऑफ बोबा से, ऑफ कोर्स अपनी प्यारी अनु के नाम। लव इज इन द एयर।

जी दोस्तों, प्यार का अंजाम किसको पता है। और हमने एक प्रश्न पूछा था कि हमने कहा था कि अनीता जी फिकॉन्फ्लैक्स से अष्टपाद जो है पका रही है, तो अष्टपाद क्या है? आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ ये फन के लिए हम पूछ रहे हैं जी, तो यू कैन मैसेज अस ऑन 5250600 पर। और यहाँ पर कटरबोर्न से जो है बबू अनंतवा जी साथ दे रहे हैं, और आपकी फरमाइश है फिल्म मेरे सनम का गाना। ऑफ कोर्स मोहम्मद रफ़ी साहब के फैन हैं आप, तो चलिए यह गाना आपके नाम और आपके पूरे परिवार के नाम।

जी दोस्तों, एस्पेरेंस ट्रेबुशे से मनोज सोहन जी साथ दे रहे हैं और आपकी फरमाइश है गाना चिट्ठी आई है और यही गाना जाएगा आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम, साथ ही साथ पूरे सोहन परिवार के नाम एस्पेरेंस ट्रेबुशे। और प्रथानुसार आप यह गाना गया सिंह आश्रम के रहने वालों को डेडिकेट करना चाह रहे हैं, हमारे टीम के लिए और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सब के नाम यह गाना जाएगा। और यही गाना हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर रिश्मा फला की यानी जी के नाम, उनके पूरे परिवार के नाम, साथ ही साथ छेड़ी और देवधारी परिवार के नाम।

जी दोस्तों, और यहाँ पर रमा दालवे की अनीता जी की कविता आ गई है और आप कहती है कि आपकी आवाज़ मेरी ज़रूरत है, आपकी दोस्ती मेरी आदत है, आपकी मुस्कान मेरी राहत है, आपकी खुशी मेरी ज़िंदगी है। फिल्म दीवाना का गाना आपके लिए और आपके किसी खास के लिए, यही गाना जाएगा ज्योति जी और शातो बिनाखस की। ज्योति जी, सुरेखा है, रेखा है, अश्नि और पूरे माधव परिवार के नाम।

दोस्तों चलिए रिश्तों के बारे में कुछ कहते हैं आज। कहा जाता है कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्सा करता है, सबसे खतरनाक वो होता है जो एक दिन शांत हो जाता है। क्योंकि इंसान तब तक लड़ता है जब तक उसे उम्मीद होती है कि कुछ बदल सकता है, लेकिन जिस दिन उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बातें, उसकी फीलिंग्स और उसकी मौजूदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती, उस दिन वह बहस करना ही छोड़ देता है, वो शिकायत करना छोड़ देता है, वो समझाना छोड़ देता है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस रिश्ते से निकल चुका होता है। याद रखिए, रिश्ते एक बड़ी लड़ाई से नहीं टूटते, वो धीरे धीरे टूटते हैं। जब एक इंसान बोलता रहता है और दूसरा सुनना ही बंद कर देता है, इसलिए यदि आज भी कोई आपसे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है तो शायद आज भी वह आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि सबसे ज्यादा खामोश वही होता है जो पहले से ही दिल से जा चुका होता है। जी दोस्तों, सेवास्तेपोल से करुणा जी यहाँ पर कह रही है, लिसनिंग टू यू एंड एंजॉयिंग द म्यूजिक, थैंक यू जी। और आप फिल्म उत्सव का गाना सुनना चाह रही है, फॉर यू एंड ऑल लिसनर्स।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, अभी तो आधी रात में समय है और लवली सॉन्ग यहाँ पर बजा है। और यहाँ पर हमने पूछा था कि अष्टपाद कौन है और किसी ने हमें मैसेज भेजा है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग देवयानी जी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑक्टोपस। सो थैंक यू इसके लिए। और यहाँ पर कौन है, जीवंत जी साथ है दे रही है और कहती है झक्कास है, कार्यक्रम को एंजॉय कर रही है और आप सुनना चाह रही है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो सभी उन लोगों के नाम जो अभी बीमार हैं, होम में हैं, बुजुर्ग हैं, आपके भाई बहन हैं, उन सब के नाम यहाँ सा प्यारा गाना।

0: का सफर।
1: जी दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त होने ही वाला है और यहाँ पर एक अंतिम गाना है, जाएगा प्रकाशवती जी के नाम। आपने गाना मांगा है फिल्म नदिया के पार, शिटी के लिए, आपके लिए और शिटी के लिए, लेकिन हमें वो रिमिक्स वर्जन मिला है तो यही चलाएंगे आपके नाम। और छोटी हैं पोलाजी से, साथ ही साथ पॉम्पलमूस से सचिन जी हैं, और जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है उन सब के नाम यह गाना, अंतिम गाना जाएगा। और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक एक बजे आप समाचार सुन पाएंगे और उसके बाद अलका जी हाजिर है इतिहास के झरोखे कार्यक्रम के साथ, और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। टेक केयर एंड लव यू ऑल।

0: सुन रहे हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ आपका नमस्कार याचना।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। देश में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत बनाने की दिशा में आज सुबह डॉक्टर भुइनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में जेराल्डिन टूसेंट ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में स्क्रीनिंग से लेकर मानसिक और शारीरिक सहयोग प्रदान करने तक सभी सेवाएँ उपलब्ध होंगी। ये केंद्र उस महिला के नाम से जाना जाएगा जिसने ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष करके कई अन्य महिलाओं को प्रेरित किया है।

0: ब्रसल्स के दौरे पर गए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने गुरुवार को यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेवकोविक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अगले वर्ष यूरोप मॉरिशस बिजनेस फोरम आयोजित करने पर सहमति जताई ताकि आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार की सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। इसका प्रसारण एमबीसी 11 और एमबीसी प्ले पर किया जाएगा। विदेशी खबरों में, जब से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो चुका है, तब से अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर घातक हमले किए। ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर ऊर्जा और पानी के डिस्टिलेशन प्लांट्स को। इस बीच खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र से गुजर रही मिसाइलों को निष्क्रिय किया जा रहा है। जॉर्डन और बहरीन ने ऐलान किया कि ईरानी मिसाइलें उन्होंने गिराई हैं। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रेलवे रोड कच्ची मिलितिया में 55 साल के 55 years old के श्री विक्रम सिंह रामदिकुल, जो रोशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान रेलवे रोड कचिमरितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे, क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। कोंकारोल रिविया दे क्रेओल में 55 साल के 55 years old के श्री सुनील तुलसिया जो सुपुप के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके मकान कोंकारोल रिविया दे क्रेओल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। पेटी पाके मोंटाई ब्लांश में 68 साल के 68 years old के जनाब भाई इस्लाम बहादुर जो इस्लाम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दोपहर 2:30 बजे उनके मकान पेटी पाके मोंटाई ब्लांश से उठाकर दफनाने के लिए इलाके का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: RM2 Radio Masti.
3: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
4: इतिहास के झरोखों से
5: श्रोताओं नमस्कार। इतिहास के झरोखों से कार्यक्रम हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम सब कुछ ऐसे पन्नों को खोलने का प्रयास करते हैं जो हमसे बहुत दूर हैं। इतिहास के किसी कोने से, किसी पन्ने से हमें ढूंढ रहे हैं। अरे कोई देखो तो सही, जैसे दूर कोई जुगनू टिमटिमाता है और कहता है कि यहाँ पर मैं हूँ। जैसे रात को सितारे चमकते हुए दिखते हैं और अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं, ठीक ऐसे ही इतिहास के झरोखों से जब हम उन पन्नों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, तो बहुत कुछ नया नया मिलता है। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे 4028070 पर। तो चलिए, आज हम इतिहास के झरोखों से कार्यक्रम में थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका की ओर चलते हैं। पिछली बार हमने सुरीनाम की बात की थी। जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में आप जब जानेंगे, वहाँ पर भी हिंदी के लिए हमारी तरह ही दर्द है। वहाँ पर भी अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को हिंदी पढ़ाना, हिंदी को देना, इसके लिए एक प्यास दिखाई देती है। और वहाँ पर हिंदी शिक्षक संघ जो है वो काफ़ी प्रयास कर रहा है, और उसमें कुछ बहुत पुराने अध्यापक भी हैं, और आप मानेंगे वे लोग हिंदवाणी नामक एक रेडियो प्रोग्राम 24 घंटे चलाते हैं। और इस रेडियो प्रोग्राम में भी जैसे यहाँ पर मनपसंद गीत, आपकी पसंद इत्यादि कार्यक्रम होता है, ठीक वहाँ पर भी वे लोग बारी

बारी से इस प्रोग्राम को जिंदा रखने के लिए सहयोग देते हैं। एक चेन सी होती है सभी एंकर्स की, वे लोग 2 घंटे 1 घंटा 3 घंटे, उसमें छात्र भी होते हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें कुछ अध्यापक भी होते हैं, कुछ अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी होते हैं, उसमें हिंदी के फिल्मी गाने, बॉलीवुड के गाने, भजन,

जो प्रस्तुत करने वाले छात्र या अध्यापक या कोई और होते हैं वे कुछ भी इसकी एवज में धनराशि नहीं लेते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को जिंदा रखने के लिए वे लोग लगातार 24 घंटे एक श्रृंखला की तरह, चेन की तरह आपस में काम करते रहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में एक प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर राम भजन सीताराम। जो लोग आज से 20 साल पहले कभी डर्बन गए होंगे उन लोगों ने इनसे ज़रूर भेंट की होगी। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके और आपने अपने समय में हिंदी के लिए बहुत काम किया और हिंदी को PhD तक वहाँ पर आपने पहुँचाया था। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर राम भजन सीताराम जी की और जो दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हुए और वहाँ पर किस तरह से हिंदी का कार्य चल रहा है और उन्होंने चलाया, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस गीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे।

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं, इतिहास के झरोखों से जब हम दक्षिण अफ्रीका की ओर थोड़ी सी अपनी गर्दन घुमाकर देखते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका हम मैप पर भी अपने देश के नज़दीक ही पाते हैं। खैर, इतना नज़दीक तो नहीं कि छू सकें, लेकिन इतिहास के पन्नों से तो पलट कर देख ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि विदेशों में, न केवल दक्षिण अफ्रीका में, विदेशों में जो हिंदी का प्रचार प्रसार का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। और क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर रानी विक्टोरिया का शासन, इसकी वजह से हमारे गुरुकुल, ये सब कुछ बर्बाद किए गए थे। तो वो जो चेतना थी एक आज़ादी की, नया काम करने की, उसको मार दिया गया था। लेकिन हिंदी को लेकर विदेशों में काफ़ी काम शुरू हो गया, बल्कि कभी कभी आश्चर्य होता है। हिंदी भाषा का जो पहला व्याकरण डच विद्वान कटलार ने लिखा था, वैसे तो पाणिनि का व्याकरण उसका आधार है और उसके बाद कई व्याकरण भी लिखे गए, लेकिन इस समय 19वीं सदी में 20वीं सदी में तो सबसे पहले डच विद्वान कटलार ने लिखा। और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, सोचिए, हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मिलता है, लेकिन वह बाद में लिखा गया। पर उससे पहले एक फ्रांसीसी विद्वान था, गारसा द तासी, उसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और आज भी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उसे खोल के पढ़ते हैं। और अंग्रेजी विद्वान सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तो हिंदी की भाषा या भारतीय भाषाओं पर काफ़ी काम किया था। और हिंदी पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास, अंग्रेज विद्वान जे आर कारपेंटर ने डिलिट की उपाधि के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया था। तो विदेशी भाषाओं के हिंदी द्विभाषी कोश भी सबसे पहले विदेशी विद्वानों ने बनाए, क्योंकि भारत में तो संस्कृत और भारतीय बोलियाँ थी, पर अंग्रेजी या जर्मन या डच, उस वे लोग जब हिंदी की ओर बढ़ने लगे और उसे समझना चाहते थे तो उन्होंने द्विभाषी कोश बनाए। आज भी अनेक विद्वान हिंदी साहित्य के अध्ययन अनुसंधान में लगे हुए हैं। अभी देखिए, अमेरिका की एक विदुषी को भारत में पद्मश्री दिया गया क्योंकि उन्होंने हिंदी को लेकर काफ़ी कार्य किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, इटली, इन सब देशों में काफ़ी काम हुआ। भारत से गए तो थे गरीब मजदूर और इन लोगों ने भी वहाँ पर बहुत कष्ट सहे, लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार इन गिरमिटिया या अन्य मजदूरों ने या जो अन्य कामगार बाद में भी गए, उन लोगों ने हिंदी को ज़िंदा रखा। आज भी देखिए, इंग्लैंड हो या मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, वहाँ पर आज भी हिंदी की संस्थाएं बड़े ज़ोर शोर से कार्य कर रही हैं। और फिजी, मॉरिशस, सुरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, गयाना और दक्षिण अफ्रीका, इन सब में तो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कितने ही पंडित, प्रोफेसर या जो लोग यहाँ से गए थे, उन्होंने काफ़ी कार्य किया और रात दिन इसमें एक कर दिया। तो आइए, गीत का आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: और सचमुच श्रोताओं, आज हम कुछ उन्हीं लोगों को याद करेंगे जिन्होंने यहाँ पहुँच कर उस हिंदी के लिए बहुत काम किया, और हिंदी नहीं, उस संस्कृति के लिए, उन संस्कारों के लिए जो वे लेकर आएंगे। और फिर हम चलेंगे प्रोफेसर राम भजन सीताराम की ओर।
1: इतिहास के झरोखों से
0: इन सभी देशों में उन लोगों को हम याद करना चाहेंगे, जैसे फिजी में प्रोफेसर ब्रज विलास लाल, प्रोफेसर सुब्रमणि, पंडित कमला प्रसाद मिश्र, इन सबको लोग नहीं भुला पाते हैं। और मॉरिशस में अभिमन्यु अनंत, ब्रजेंद्र कुमार भगत मधुकर, मंग

भगत जिन्होंने दुर्गा पत्रिका निकाली थी, पूजानंद नेमा जी, सोमदत्त बकोरी जी, सीता जी, हरीश नारायण सीता जी, इन सबको हम कैसे भुला सकते हैं। उधर सूरीनाम के डॉक्टर जीत नारायण, हरिदेव सहतू, अमर सिंह रमण और त्रिनिदाद के बॉब गोपी, हरिशंकर आदेश, और इधर दक्षिण अफ्रीका के प्रारंभिक दिनों में स्वामी शंकरानंद, भवानी दयाल सन्यासी, वेदालंकार जी, इन लोगों ने शुरू में अपनी संस्कृति के लिए काफ़ी काम किया। इधर प्रोफेसर राम भजन, सीताराम जी और उनके साथ बिरजानंद बदलू गरीब भाई, उषा देवी शुक्ल, विश्राम बिलास, इन सब ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, हम अपने ऊपर आज गौरव कर सकते हैं। मॉरिशस में जब यज्ञ, पूजा ये सब कुछ होता है तो संस्कृत में या हिंदी में ही हमारा पंडित वर्ग बोलता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में वहाँ पर भी बहुत सारे आर्य समाजी हैं, आर्य समाज भी है, लेकिन जिस समय वे लोग यज्ञ करते हैं या महायज्ञ करते हैं और जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर सभी लोग, जो वहाँ के पंडित जी कह लीजिए या जो यज्ञ को करवाते हैं, वे चाहे नीचे धोती पहने या ना पहने या मान लीजिए पैंट पहने, पर ऊपर वे लोग पादरियों की तरह एक चोगा पहनते हैं, और बहुत से लोग भी जो यजमान बनते वे भी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो छाप सी दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात, पूरी व्याख्या सब अंग्रेज़ी में होती है, तो इस बात के लिए मॉरिशस अपने ऊपर गर्व कर सकता है कि हमने अपनी संस्कृत के मंत्रों के साथ साथ हिंदी को भी जिंदा रखा है, और हमारा सभी पंडित वर्ग, ट्रेनिंग भी उनकी हिंदी में होती है और वे लोग हिंदी में सब करवाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में ये कमी मुझे तो दिखाई दी कि कम से कम जो वस्त्र, जैसे हम लोग निश्चित करते हैं कि जब पूजा में जा रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं, तो हम अपने सांस्कृतिक वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वहाँ पर इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बदलाव आ गया, एक परिवर्तन आ गया। अब दक्षिण अफ्रीका का अगर देखा जाए कि सबसे वरिष्ठ हिंदी सेवी कौन है, तो ये आचार्य राम भजन सीताराम जी ही हैं। जीवन पर्यंत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हिंदी की सेवा की, और उन्होंने हिंदी को, सबसे बड़ी बात, विश्वविद्यालय स्तर तक पहुँचाया उन्होंने। मतलब आज हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई हिंदी का सही रूप में ध्वजवाहक था तो वे ही थे, और उन्होंने 2003 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का एक आयोजन किया था, और जहाँ पर उन्होंने सभी आने वाले लोगों को क्या संभावनाएं हैं, स्थिति क्या है अफ्रीका में, बहुत कुछ वहाँ पर डिस्कशन हुए थे, बातचीत हुई थी, और प्रभाकर श्रोत्रिय जो एक बहुत बड़े लेखक भारतीय के हैं, उनको भी उन्होंने वहाँ पर बुलाया था। तो इस संगोष्ठी में भारत के बहुत से विद्वान जुटे, मॉरिशस की स्थितियों को लेके चर्चाएं हुई, और कैसे और हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। श्रोताओं, समस्याओं से वे भी जूझ रहे हैं, जैसे हम यहाँ जूझ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, 6ठी भी पास कर लेते हैं, 7वीं भी कर लेते हैं, 9वीं भी कर लेते हैं, लेकिन बोलने का जब वक्त आता है तो 10 वाक्य नहीं बोल पा रहे। वहाँ पर तो और भी स्थिति बुरी है, अब नागरी लिपि, देवनागरी लिपि सिखाना भी समस्या हुई पड़ी है। ठीक वहाँ पर यही समस्या उठ रही है कि हिंदी सीख के करेंगे क्या। तो ऐसे में प्रोफेसर राम भजन जी, जो बीच में उन्होंने 2003 में, 1999 में भी एक संगोष्ठी हुई थी, तो वहाँ पर इन बातों को लेकर काफ़ी डिस्कशन किए गए।

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं, इन पन्नों को जब हम पढ़ते या इनको उलटते हैं तो प्रेरणा बहुत मिलती है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार संस्कृति बनी रहे। इसीलिए हम उनको बताना चाहते हैं कि इतिहास में जो लोग या जिनके नाम उन पन्नों में लिखे गए हैं उनके बारे में समझो। बड़े दुख की बात है, जैसे अभिमन्यु अनंत के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं। आप उनसे पूछिए अभिमन्यु अनंत कौन थे, उन्हें पता ही नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। क्यों? क्योंकि हमें भी पता नहीं है, हम बताना भी नहीं चाहते, ना हम खुद जानना चाहते हैं, ना हम अपने बच्चों को बताते हैं। तो जब तक हम स्वयं स्वाध्याय ना करें, अच्छे कार्यक्रमों को ना सुने, कुछ पुस्तकें ना पढ़ें, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? मतलब हम अपना एक लेखक तक उन्हें नहीं बता पाते हैं। हाँ, उन्हें गमट पता है, उन्हें बॉलीवुड के गीत पता हैं, तो क्यों नहीं अपने लेखक भी पता। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति और हम बड़ों में भी एक कमी तो है ही, क्योंकि हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। हम पिज्ज़ा की चर्चा करते हैं, हम खाने पीने की चीज़ों की चर्चा करते हैं, कहीं मेला लगा हो, कहीं घूमने जाना हो, ड्रेस की, कपड़ों की, लेकिन हम साहित्य की चर्चा नहीं करते हैं या अपने इतिहास की चर्चा बच्चों के साथ कम करते हैं। और हम हर बार बस उन्हें यही बताते हैं, तुम्हें पता है हमारे दादा दादी पूर्वजों ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन इन कष्टों को किसने शब्दों में बांधा, ये भी तो उन्हें बताना चाहिए ना। केवल उस बात को ऐसे ही कहते जाएं कि हाँ बहुत कष्ट सहे, तो बच्चों को प्रमाण के रूप में पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम, रचनाकारों के नाम, संघर्ष करने वालों के नाम, यहाँ तक कि बच्चों को तो अपनी पुरानी हिस्ट्री भी उतनी नहीं पता है। इस देश को कैसे आज़ादी मिली, उसमें कौन कौन से नेता उभर कर आए, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। तो श्रोताओं, अगर हम

दक्षिण अफ्रीका के जो हिंदी के महान व्यक्ति प्रोफेसर राम भजन सीताराम, नाम भी देखिए कितना प्यारा है, राम भजन सीताराम, इस नाम में ही दिखाई दे रहा है कि उनके माता पिता ने कितना सोचकर ये नाम उनको रखा होगा। मतलब राम भजन भी केवल रख सकते थे, सीताराम भी रख सकते थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनका नाम है प्रोफेसर राम भजन सीताराम। वास्तव में श्रोताओं, उन्होंने हिंदी में इतनी पढ़ाई की कि वे यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बन के वेस्ट विले कैंपस में हिंदी के आचार्य बने, और इसके साथ साथ उन्होंने कई छात्रों को पीएचडी भी करवाई, और उनका नाम दक्षिण अफ्रीका में आज पूरा हिंदी जगत जानता है। प्रोफेसर राम भजन सीताराम भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए की थी और फिर एलएलबी की थी, मतलब उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई की थी। जैसे हमारे यहाँ पे सोमदत्त बकोरी जी हिंदी में लिखते भी थे लेकिन मूलतः वह एक वकील थे, तो उस पेशे के होते हुए भी वे हिंदी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही विद्यावाचस्पति की उपाधि उनको 1977 में मिली थी। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन विश्वविद्यालय में उन्होंने 1971 से सन 2000 तक हिंदी पढ़ाई थी, तो सोचिए 30 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं वहां पर दी थी। और इस प्रकार से उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2012 में 22 से 24 सितंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में लगा था, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी काम किया, और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही योग्य लोगों को बुलाकर जोहान्सबर्ग में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन को सफल बनाने में उनका बहुत योगदान था। प्रोफेसर राम भजन सीताराम के माध्यम से वहाँ पर जब लोग पहुँचे तो उन लोगों को पता चला कि वास्तव में दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लोग खूब लगे हुए हैं। एक किताब थी प्रतिबंधित कृति डर्बन का बलवा, ये मिल नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने कोशिश करके यह जो डर्बन का बलवा और हिंदी आला, इन किताबों को भी ढूंढकर उस समय के विद्वानों को उन्होंने इसे दिया था।

श्रोताओं, तुलसीराम पांडे की पुस्तक थी दर्पण का बलवा और देवी दयाल का था हिंदी आला। अब ये मूल पाठ तो मिल गए लेकिन इनको छपवाना था, तब बाद में भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली वर्धा से उनके संयुक्त तत्वावधान के अंतर्गत ये दोनों पुस्तकें एक पुस्तक के अंतर्गत छपी, जिस पुस्तक का शीर्षक है प्रवासी भारतीय साहित्य। इसमें दक्षिण भारत के साहित्य के इन दोनों पुस्तकों को भी लिया गया है और इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा, जिन्होंने प्रवासी साहित्य पर काफ़ी काम किया है, मॉरिशस के, सुरीनाम के, फिजी के। तो श्रोताओं, ये तो साउथ अफ्रीका की बात हुई, लेकिन

0: आज मॉरिशस की भी ऐसी किताबों को लोग ढूंढ रहे हैं छपवाने के लिए जो उस समय की मूल प्रतियां यदि किसी के पास हों, और हो सकता है मूल प्रति एक बार छपी हो उसके बाद दोबारा छपी नहीं। पता नहीं आप में से किसी के घर में दादा बुजुर्गों के सामान में कहीं कोने में पड़ी हो, ज़रूर देखिए, क्योंकि इस तरह की जो पुरानी पुस्तकें हैं जिसमें वो जो पुरानी उनकी अपनी हिंदी उनकी अपनी समस्याएं, अगर वो हैं तो कृपया उसे उजागर कीजिए ताकि भारत में कई प्रोफेसर उसे छपवा और संस्थाएं छपवाना चाहती हैं और वे लोग ढूंढते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मॉरिशस की दुर्गा पत्रिका जो हस्तलिखित थी और जिसकी प्रतियां हिंदी प्रचारणी सभा के संग्रहालय में भी हैं, वहां से कमल किशोर गोयनका जी को सब चीज़ें प्राप्त हुई और उन्होंने दुर्गा दो खंडों में वह जो पूरा हस्तलिखित है उसे 2018 में श्रीमती सुषमा स्वराज जी की मिनिस्ट्री से जो बजट मिला उससे छपवाई है। आप वो दोनों खंड अब मॉरिशस के किसी भी पुस्तकालय या तो इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर या विश्व हिंदी सचिवालय या महात्मा गांधी संस्थान में जाकर वो दुर्गा पत्रिकाओं के सारे अंक आप देख सकते हैं। तो जब छप जाते हैं तो हज़ारों के हाथों में जा सकते हैं और जब मर्जी आप उसे इश्यू करा के अपने घर ले जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि पुरानी प्रतियां किसी को देना कठिन होता है कि वे ख़राब ना हो जाएं। तो ठीक इसी तरह से ये दोनों मूल पाठ की जो प्रतियां थी ये भारत तक प्रोफेसर रामभजन सीताराम जी ने ही पहुँचाई और ये आज छप चुकी हैं, हम पढ़ना चाहें तो प्रवासी भारतीय साहित्य पुस्तक में पढ़ सकते हैं।
1: इतिहास के झरोखों से
0: तो श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के प्रोफेसर रामभजन सीताराम जी के उस झरोखे से झांक रहे हैं जहां से उनके कार्यों के बारे में हमको पता चलता है। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी को स्थापित करने बढ़ाने में उनकी भूमिका तो रही ही, और डर्बन के वेस्ट विले कैंपस में जहाँ उन्होंने सालों काम किया और अध्यक्ष भी रहे, वहाँ उनके निर्देशन में प्रोफेसर राजेंद्र मिस्त्री और प्रोफेसर उषा देवी शुक्ला ने अपने शोध प्रबंध भी लिखे और महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की। राजेंद्र मिस्त्री ने ए सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ भोजपुरी हिंदी इन साउथ अफ्रीका, आप सोचिए हमारे यहाँ भी भोजपुरी, वे लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, ए सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ भोजपुरी हिंदी इन साउथ अफ्रीका विषय पर पीएचडी के लिए शोध किया, जो बाद में विट्स वाटरसन विश्वविद्यालय से 1991 में लैंग्वेज इन इंडेंचर शीर्षक से प्रकाशित हुआ और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। देखिए श्रोताओं, भोजपुरी हमारे यहाँ भी है लेकिन उसका भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन हमको नहीं मिलता है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक गिरमिटिया लोग कैसे लेकर आए, और यहाँ तक कि हमें मोहित जी की पुस्तक में भोजपुरी की लोकोक्तियाँ मुहावरे एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसका संयोजन किया हुआ है। प्रोफेसर उषा देवी शुक्ल ने दक्षिण अफ्रीका में रामचरितमानस इस पर अपना शोध किया और इन दोनों के शोध निर्देशक थे प्रोफेसर रामभजन सीताराम जी, और प्रोफेसर रामभजन के निर्देशन में कई विद्यार्थियों ने डिफिल डिलीट भी किया, तो दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालयों में उनको यह उपाधियां मिली। काम हिंदी का था भोजपुरी का था लेकिन कार्य सारा अंग्रेज़ी में हुआ क्योंकि साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी माध्यम है बातचीत का।

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं राम

भजन जी ने जितना काम किया लेखन के क्षेत्र में भी उनका सहयोग बहुत अधिक रहा। मतलब उन्होंने जो प्रवासी हिंदी साहित्य पर कितनी किताबें छपी उनकी विस्तृत समीक्षाएं लिखी जो आज शोध करने वालों के लिए बहुत ही जिसे हम कहते हैं ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो। और अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी समीक्षाएं छपी और फिजी में हिंदी स्वरूप तथा विकास, सुरीनाम का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, इसकी भी समीक्षाएं उन्होंने लिखी और समकालीन भारतीय साहित्य और हरियाणा अकादमी की हरिगंधा जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी कितनी समीक्षाएं प्रकाशित हुई थी। प्रोफेसर राम भजन सीताराम ने विश्व के अनेक देशों में आयोजित अकादमिक सम्मेलनों में भाग लिया, शोधालेख पढ़े और दक्षिण अफ्रीका में अर्थात नेटाली जहाँ भाषा बोली जाती है वहाँ पर कैसे हिंदी की चुनौतियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उसकी उन्होंने चर्चा की और लोगों को परिचित कराया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना द्वारा संपादित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में प्रोफेसर राम भजन सीताराम का शोधालेख छपा और जिसका शीर्षक था दक्षिण अफ्रीका में हिंदुत्व। मतलब जहाँ एक और हिंदी वहाँ वे लोग धर्म की भी स्थापना रक्षा के लिए लगे हुए थे। और सचमुच उनका व्यक्तित्व जो था, जहाँ वे प्रोफेसर थे, जहाँ आचार्य थे, जहाँ वे बहुत से एकेडमिक सेशंस का अरेंज करते थे, मैनेज करते थे, फिर विश्व हिंदी सम्मेलन उन्होंने डरबन में जो हुआ उसको जोहान्सबर्ग में जो हुआ उसमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था लेखन के क्षेत्र में, और हिंदी और हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किए थे।

श्रोताओं, हम आपके लिए इतिहास के झरोखों से ऐसे ही ऐतिहासिक व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, क्योंकि वे हमारे प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को कहते हैं अपने पुरखों को याद करो, अर्थात उन्होंने जो हमारे लिए विशेष किया तभी ना आज हम यहाँ पर हैं, अन्यथा आज अब तक हम जंगली ही होते शेर की तरह। हम आज एक विकसित मनुष्य बने हुए हैं, सोचते हैं, कार्य करते हैं। तो वास्तव में राम भजन सीताराम जी को ही उनकी प्रवृत्ति अनुसंधान परक थी, खोज कार्य। ऐसे ही बातों को हल्के में नहीं लेते थे, लेकिन व्यक्तित्व तो बड़ा ही सरल था उनका। श्रोताओं, मैं भी उनसे मिली थी 2000 के आसपास। बहुत ही सरल व्यक्तित्व, बहुत ही मिलनसार और मदद के लिए तो हमेशा तत्पर। कविता भी लिखते थे वे। कितने हिंदी सम्मेलनों में उन्होंने कविताएँ पढ़ी। त्रिनिदाद में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो उन्होंने कविता पढ़ी हिंदी की विजय यात्रा, और उनकी कुछ कविताएं और भी थीं, तीन निहत्थे सरदार, भारत माँ कस्तूरबा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदी का विश्व ग्रामीण।

ये स्वरूप। तो इस प्रकार से पूरे विश्व के साथ हिंदी का जो संबंध और साउथ अफ्रीका का, इसको उन्होंने पूरी दुनिया के सामने लाने में बहुत योगदान दिया और उनकी हिंदी सेवाओं के लिए उनको कई सम्मान प्राप्त हुए। दक्षिण अफ्रीका का हिंदी शिक्षा संघ ने उन्हें विद्या रत्न की उपाधि दी, पंडित नरदेव श्रेष्ठ पुरस्कार उन्हें मिला। त्रिनिदाद में हुए 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, जोहान्सबर्ग में जब 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 2012 में, उनको सेवाओं के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। तो सचमुच वे एक अभूतपूर्व हिंदी के सेवक थे। अपने आत्मप्रचार से हमेशा दूर रहते थे, बड़े ही शालीन थे और सबसे बड़ी बात स्वाध्याय प्रिय व्यक्ति थे। तो जहाँ पर अध्ययन में रुचि होती है ना श्रोताओं, वे इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना ही जाते हैं। तो चलिए अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के पन्ने को खोलते हुए। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ।

0: all a very good afternoon and check your time. इससे पहले के ठीक 3 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से याचना के साथ. आपको नमस्कार याचना.
1: नमस्कार हंसिनी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. कुछ कैदियों को फिल्माया गया जब वे सिगरेट जैसी देखने वाला कुछ बना रहे थे. एक मोबाइल फोन के जरिए बोबासा की जेल की दीवारों के पीछे ये दृश्य कैद किए गए. ऐसी वीडियो जो जल्द ही वायरल हो गई. इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सिगरेट को छोड़िए लेकिन मोबाइल फोन ही कैसे अंदर गया जब इनकी अनुमति ही नहीं थी. देश में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत बनाने की दिशा में आज सुबह डॉक्टर ब्रूनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में शगालजिन टूसे ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया. इस केंद्र में स्क्रीनिंग से लेकर मानसिक और शारीरिक सहयोग प्रदान करने तक सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी. ये केंद्र उस महिला के नाम से जाना जाएगा जिसने ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष करके अन्य महिलाओं को प्रेरित किया है. संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस ने वैश्विक आवास संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की. मंत्री शकील मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया जहां न्यू अर्बन एजेंडा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आकलन किया गया. शकील

0: मोहम्मद ने आवास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए सरकार द्वारा पहले से उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। वैश्विक स्तर पर कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार की सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड और फ्रांस की टीमें आपस में टकराएंगी तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए। इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Mana.

0: 18 जुलाई शनिवार का दिन। आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और MBC 3 पर इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारित देखते हुए हमारे सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। एक घंटे के आज के इस सफर में मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। मेरा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। और आज का दिन हम बात करेंगे, फिलहाल आज 18 तारीख है, पर 4 जुलाई को, जी हाँ, पहले शनिवार को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। तो इस पर आज का ये कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं दो ऐसे अफसर जो इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री डी कालीचरण, जो वरिष्ठ सहकारी विकास अधिकारी है यानी कि सीनियर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीमान बी राम तोहल जी, जो प्रिंसिपल कोऑपरेटिव ऑफिसर है यानी कि प्रधान सहकारिता अधिकारी थी। तो चलिए आज उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम राम तोहल जी से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और जानेंगे कि कोऑपरेटिव यानी सहकारिता होता क्या है और इसका महत्व किस प्रकार से होता है। आइए जानते हैं। श्रीमान राम तोहल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सब सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: और आज हम जरूर जानेंगे, पहले तो हमें ये बताइए राम तोहल जी कि सहकारिता यानी कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है।
1: एगो कोऑपरेटिव ऐसा संस्था है जिनमें लोग इकट्ठा होला एगो एक्टिविटी इकोनॉमिक करे के। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि कोऑपरेटिव के ओकर मॉम ही चलावे और जो डिसीजन आपन आपस में ले बनना और जो मुनाफा हो आपस में बांट ले लिया।
0: और उकर कितना प्रकार रहेला, कितना टाइप्स रहेला?
1: मोगिस में बहुत प्रकार के कोऑपरेटिव बा।
0: हाँ।
1: गन्ने के कोऑपरेटिव बा जिनमें लोग अपन गन्ना बेचे लंसा। क्रेडिट यूनियन बा जिनमें लोग पैसा इकट्ठा कर लंसा और लोन लेवे लंसा। कोऑपरेटिव एग्रीकोल बा जिनमें लोग सब्जी और फल उगावे लंसा। मच्छीमार के सेक्टर में भी बा मच्छीमार लोग मच्छी मारे लंसा। महिला के कोऑपरेटिव बा जिनमें लोग महिला लोग इकट्ठा होकर एगो एक्टिविटी
0: एगो एंटरप्रेन्योर काम करे लंसा। अच्छा।
1: लेलवाज के भी बा।
0: अच्छा।
1: गाँव पोषण और बकरी के पोषण और यही।
0: और जैसे मतलब खुद के कोनो कार्य करे के रही, छोटा सन कार्य करे के, एगो शुरुआत करे के रही,
1: एगो कोऑपरेटिव मोति करे,
0: एगो फोमे करे के। अच्छा। और यही के जुन पंजीकरण करे के हा, उकर उकर कैसे उकर जुन मतलब कैसे एगो रजिस्ट्रेशन कैसे होला?
1: हाँ, कोऑपरेटिव के शुरू करे के 5 सदस्य चाहे ना, और 5 सदस्य चाहे ना, ओके 5,000 इकट्ठा करे के जोन बोले शेयर कैपिटल।
0: अच्छा।
1: ओके। और चाहेला 1,000 रुपया एप्लीकेशन फीस भरे के। एगो फॉर्म एप्लीकेशन बा जो जोन चाहेला भरे के।
0: अच्छा।
1: वो फॉर्म वा मिली मिनिस्ट्री में।
0: uh-huh.
1: एगो यूनिट बा रजिस्ट्रेशन यूनिट, तो वो सेक्शन वो एनरजिस्ट्रमेंट करे लन सा। और 5 CBC बा वो भी कोऑपरेटिव के एनरजिस्टर के सपोर्ट देवे लन सा। फॉर्म वा वही पर मिली। और फॉर्म एप्लीकेशन में सब कुछ बा, सब डिटेल बा, कोऑपरेटिव के नाम, कौन ऑब्जेक्टिव बा कोऑपरेटिव वा के, कौन रीजन में ऑपरेट करेला,

0: और कौन कौन उसके डायरेक्टर बा और सब देता बा
1: मतलब उत्तरा निमन से गीत एगो देवी हाँ, दे कैसे शुरू करे
0: निमन चाहेला भरे के हां हां और चाहेला सुमित करे के मिनिस्टर
1: अच्छा
0: और कार्ड आइडेंटिटी सब सदस्य के कार्ड आइडेंटिटी फोटोकॉपी ओकर प्रूफ एड्रेस सब चाहिए
1: एगो एगो मान ल एगो पहला पहला हला जे शुरुआत करत होवन उ उ हुआ चल जाई त उ ओकरा सब इंफॉर्मेशन दे दे निमन से
0: इंफॉर्मेशन मिली तब सकेला

0: तब ठीक का रजिस्ट्रा अप्रूव कर देता सर्टिफिकेट।
1: और हाई कितना दिन के ड्यूरेशन में होला?
0: 5-7 दिन में,
1: एक सप्ताह में, मान लो एक सप्ताह में हो जाए।
0: सब डॉक्यूमेंट चाहिए सबमिट करे के,
1: अच्छा,
0: सब प्रोसीजर स्वीव करे के, तब जाके रजिस्ट्रा
1: हो जाए
0: सर्टिफिकेट।
1: तो चला आज के कार्यक्रम में बिल्कुल सहकारिता यानी कोऑपरेटिव कैसे शुरुआत करे के, कैसे हई में तू जुड़ब, कैसे रजिस्ट्रेशन करब, हई पर एगो और कुमाजा कार्यक्रम के अंत में भी एगो बार फेरो से तोहरा बताओ अब जाकी कैसे तू रजिस्ट्रेशन करे सकब, जेकर से तू जे तोहरा मन में बा एगो रजिस्ट्रेशन करे के कोऑपरेटिव के, त कैसे तू आगे बढ़ब। और आज हमर संगे है जा पर सीनियर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमान कालीचरण जी भी उपस्थित होल हवन। त चल जानब स कि कोऑपरेटिव जोन सोसाइटीज हवन ओ कोऑपरेटिव डिविजन द्वारा कौन कौन हमनी के सेवा प्रदान करेलन। स कालीचरण जी बहुत बहुत स्वागत बाते, हम जानीला आज तोहर तबियत उतना अच्छा नहीं बा, पर फिर भी तू हाइजा पर उपस्थित होल हवा हमर खातिन है ये बहुत बड़ा बात है। तो चला जानब स कि कोऑपरेटिव जो सेवा है वो हमने के कौन कौन सेवा प्रदान करेलन सर।
2: धन्यवाद सब सुनने वालों की, नमस्ते। ये जाने लो है जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, थोड़ा संक्षेप में बोला था कि शुरू हो रहा 1913 में, 1913 में लगभग 113 वर्ष हो गल बाते, लंबा धरला कोऑपरेटिव जो मानिए फैसों से जैसे रिवोल्यूशन होल बाते वो बहुत आगे पहुँचल बाते। तो शुरू से आज ले देखा जाता हमने के कौन कोऑपरेटिव वाह धरल 1200 कोऑपरेटिव सोसाइटी बाते,
1: अच्छा,
2: जैसे
1: मोरिस भर में
2: भाई राम देवल बोला कि कितना प्रकार के वन जा, और लगभग धरल 2,85,000 बाते।
1: अच्छा,
2: और हमने के जो इकोनॉमिक कंट्री कंट्रीब्यूशन है नेशनल अथी पर धरला 5.5 बिलियन रुपीस लोग के एनुअल टर्नओवर।
1: अच्छा,
2: तो मिनिस्टर को बेगा चीफ जन कहा हमने के कोऑपरेटिव डिविजन्स एगो फैसिलिटेटर है, धरला बहुत सुविधा देवेला कोऑपरेटिव लोग के, वो लोग के इवोल्यूशन करे के कैसे लोग ऑपरेशन कर जन जा, वो लोग के मैनेजमेंट कैसे रही। तो हम यहाँ हमने के डिविजन में बातें जो देला से फाइनेंशियल सपोर्ट और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: अच्छा,
2: तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमने देला जा कोऑपरेटिव लोग के उधर ला एगो ग्रांट स्कीम है। तो ग्रांट स्कीम है यह शुरू रहा धर 6 वर्ष हो गए।
1: अच्छा,
2: 6 वर्ष से हमने देला है।
1: अच्छा,
2: तो 2020 20 साल से शुरू हो, वही जब हवे समय जब बहुत महामारी रहा कोविड के, जितना बिजनेस रहा सब गिर रहा, तो सरकार सोचता कि कैसे चला लेके उठाएंगे। तो हवे से शुरू होल एगो बूस्ट टू लोकल प्रोटेक्शन स्कीम धरला 100 से 150 मिल दिली सा 150,000 दिली सा सबको भी अचीव के। तो हव अच्छा हव स्कीम हुआ बहुत पॉपुलर।
1: अच्छा,
2: आज ले वही पॉपुलर बात है। तो हर बरिस में फाइनेंशियल जो रहा हमने के नवा स्कीम आल धरला लाइफ स्टॉक ब्रीदिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के दिशा और अच्छी बन गई सीडलिंग प्रोडक्शन अच्छी रहा सब। तो हम ऐसे करके कितने प्रकार के स्कीम दे दी जा, तो सका हम सका बोले आज 6 वर्ष हुआ में 175 जस्ती कोऑपरेटिव बेनिफिट करने बात है, और लगभग 60 मिलियन रुपीज दे देना है जा उलोग के जमे उलोग के बिजनेस एफिशिएंसी है, फूड सिक्योरिटी और कोऑपरेटिव मूवमेंट जस्ती आगे बढ़ी। हाई हाँ हमने के जो कहा जब फाइनेंशियल सपोर्ट नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमें दे ला जा, तो हमने ऐसे दे ला जा कैसे भाई राम थोड़ बोलक वो लोग के डिविजन वो लोग हाउ अकाउंटिंग के वो लोग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब पारे कर जा, और हमने दे ला जा फ्री ऑडिट्स।
1: अच्छा,
2: ऑडिट करके और हमने
1: सब सहयोग मिलेला कोऑपरेटिव बगल से
2: अच्छा, और वो लोग के मार्केटिंग करे के हमने ऑर्गेनाइज कैला जा हर महीना और धरला रीजनल बेसिस होला हई कोऑपरेटिव मार्केट फेयर।
1: अच्छा,
2: तो ई एक ऑर्गेनाइजर का कैसे बोले मंदिर का मार्केट, तो हमें दे ला जा और के अपॉर्चुनिटीज जब मैं अपन अपन जो फौजी है उससे के लोग जाके बेचे और आगे भी वो लोग सकें जहाँ नेटवर्किंग करे और क्लाइंट से चेंज द हाउ लिखवा खरी करे जब मैं वो लोग के हाउ जो सप्लाई है वो लोग के प्रोडक्ट जस्ती नीमत से बेचाई और कोनो प्रोजेक्ट जोन बातें उतना नहीं मचे काम कर लग जा तो वो लोग कह सकें अपन आम योग करी जस्ती नहीं मचे पूर्वी बनाए जब हमने क्या कुपरी आज आइडेंटिटी

0: 喺 identity 話，真係你幾點先到 K K？
1: 啊，
0: 真。嗱，我個俾啲方面就唔會啦，就一個 family 係。
1: 嗯哼。
0: 就幫個 suggestion 係嚟講，咩一個 family 一個 family 嚟講，
1: 一個
0: family 嚟講，你都搞唔到啦，就。但係講埋，講咩個俾啲咩話題係 common bond。
1: 啊，
0: 個一打。
1: 嗯哼。
0: 我哋嘅 cooperative 啊，論話題，依啲呢，第三 organisation 啲呢，擺喺呢度。एक नहीं हो एक हमें बात है कोऑपरेटिव वैल्यूज हो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बात है जैसे वैल्यूज जैसे बात है सेल्फ हेल्प सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वालिटी इक्विटी तो ये सब धारा को ह्यूमन वैल्यूज में कब इनकल्केट कर लिया जाए
1: हाँ कहे के एगो एगो काम जब तू शुरू करत हो एगो एगो व्यवसाय शुरू करत हो तो हर चीज बहुत मायने रखे
0: कोऑपरेटिव सोसाइटी हम सब बोले कि एगो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें काम होला विकास होला सब कहते हैं कि काम कर रहे हैं इकोनॉमिक जनरेटिंग रेवेन्यू जनरेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैं एक और से आर को सीख लिया सर कि कैसे हमने के कम्युनिटी में साथ जिए के कैसे सब कोई सारा एकता से काम करी और मैं सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें जा कम हो करें जा और एकता नहीं जा हाई कॉमन बॉन्ड वहाँ जस्ती तरह महत्वपूर्ण है
1: नहीं और कोनो भी काम शुरू करे आगाड़ी हाई सब चीज बहुत मायने रखे लंसा जेकर से आगे जाके तू संगे कुमाजा और भी आदमी तोहर संगे जुड़ी तो उकरा तू एदे करे सकब और हाई जो कोऑपरेटिव है केवल पांच व्यक्ति से शुरू करल जाला या मिनिमम पांच
2: कम
1: से कम पांच चाहिला और जस्ती तू जितना आने सकब उतना जस्ती अच्छा और जैसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बात करत हई तो आज के जो सामाजिक और आर्थिक चुनौती जे कोऑपरेटिव बगल से यानी कोऑपरेटिव वैल्यूज के तू जैसे बात करलन ओकर कौन भूमिका है कौन कौन चैलेंजेस के फास करेलन सर
0: अभी के समय में जैसे देखिला जब बहुत तनाव हुआ थे
1: हाँ
0: अशांति भरा हुआ था सब हमने के हाई तरह सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं बातें तो हमने कोऑपरेटिव के माध्यम से सीखे जला है कि सिखाया जा कि हमने कैसे सब विश्व में शांति आने कैसे सब एक दूसरे मिल के काम करे के और जब देखा जब समाज के जब काम करता हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी एगो समाज के काम करी तो समाज के बाद में देश के सब कुछ
1: चलावेला
0: हाँ देखा मैं शांति आने ला सब कोई नियम से काम करी और एक में जितना लोग इनकम रहेला तो सकल सब अपन में जैसे मैं सब और बोलन जा कि सकल सब हाउ जो नफा रहेला और लोग सब बांटे बांटे
1: के हाँ हाँ
0: तो हाँ ये धरले हमने के मुख्य हम देती हमने के कोऑपरेटिव
1: ऑब्जेक्टिव
0: की है कि सब के साथ डाला कि हाई कोऑपरेटिव या हाई कोऑपरेटिव शुरू हो बात 1913 से 113 बड़ी जस्ती हो गल बात हमने के इंडिपेंडेंस मिले के अक्ति तो हमने के जो कहला है हमने के हिस्टोरिक वैल्यू जो है कोऑपरेटिव वास्तव में बहुत जुड़ल बात है तो ये हमने के चला हर दम
1: यानी आज ले वो चले
0: आवा था वो चैलेंजेस बात है कंस्ट्रेंट बात है मैं समय से सकला चला और करते सॉल्यूशन हमने के चला खोजे के हमने में
1: तो है जन जैसे तू बोला था 1913 से शुरू होल बा और 113 बरिस से जस्ती है होगल बा तो है काहे प्रतिवर्ष हई दिवस के मतलब जैसे पहला शनिवार जो मनावल जाला काहे मनावल जाला हई दिवस वा और ओकर कौन महत्व है
0: हई इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो है एगो इंटरनेशनल इवेंट है एगो इवेंट ऐसा सेलिब्रेशन कर विश्व सक्रो सब अपन देश में जन बाते कोऑपरेटिव बाते धर में हमने को शोकेस कर हाउ दिन हुआ हमने सोची ला सर हमने के कोऑपरेटिव कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हई देश में आना था देश में और भस विश्व मान्यता कैसे काम होता तो हमने यही सोचा था कि सब परिवार जब भेटाला हुई दिन हुआ तो सोचा था हमने कि आगे कैसे चला कर आर चीज करे के जो हमने की कोपरे के मुंह में जस्ती मजबूत बनी और हाई जो जवान लोग है ये लोगों एक में आए तो हाई जस्ट हाई आई सी देवा हमने माना जो फर्स्ट सैटरडे इन जुलाई में तो ये बताना कैसे हाई जो कहला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे बोला जा सोशल इंक्लूजन और जो कहला डिसेंट एम्प्लॉयमेंट हाँ ये सबसे तीन गो चीज आज के समय में बहुत
1: महत्वपूर्ण
0: तो कोऑपरेटिव से को माध्यम से हमने वजह इंकल्केट कर सकते वैल्यूज वन कैसे हमने सिर्फ काम नहीं करी ला सर हम जाना के सोचे कि कैसे हम कैसे जिए के वो परिवार एक
1: बिल्कुल
0: जो तनाव अशांति जो बातें ये दूर हो जाए
1: तो कालीचरण जी जैसे हर एगो इंटरनेशनल डे जब मनावे लंसा तो एगो थीम ओकर में दलाल जाला था कोऑपरेटिव दिवस के थीम हाई बरिस के थीम कौन सी है
0: हाई बरिस के थीम तनी स्पेसिफिक है हमने की कॉन्टेक्सुअल जैसे बोला जा तो एक थीम हाई बरिस के रहा 2026

0: Timur, cooperatives for a peaceful world.
1: Peaceful world.
0: Peaceful world. Darulah ki cooperative kaise sakela contribution kare jab main vishv mein shanti aane.
1: To kaise shanti cooperative kaise shanti devela ko maja ego kaise contribute karela vishv shanti mein.
0: Dane na hai vishv mein jan kahala cooperative bahut phalal bate. Dusra dost barabar desh jan bate. हुआ पर कोऑपरेटिव्स के ओकर जो कहला ओकर टर्नओवर ओकर एम्प्लॉयमेंट जो ना ओकर इकोनॉमिक्स जो बेनिफिट्स क्रिएट ना था वो लोग ढेर बहुत बहुत ऐसे बातें तो हाई माध्यम से ये लोग जब कोऑपरेटिव बने वैसे नंबर है कोऑपरेटिव तो धर गिरला में हमने के चला पांच गुजरा रहा है कि कोऑपरेटिवों में अब एगो एगो सोसाइटी रही वो में पांच जना रही अब दस गो सोसाइटी से होला पचास हो गल तो ऐसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट होला एक में है एगो माध्यम है कि हमेशा शांति आने का तो जब विश्व में हाई बरिश्वा जब देखी रहा जब हमने कि जहाँ पे जियो पोलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट बातें हई एनर्जी क्राइसिस तो इस सबके एगो सोशल क्राइसिस आने वाला तो कोऑपरेटिव जो ऐसा एगो माध्यम बात है जो सबके खुदा जुटाए के हई जो उनका कॉमन मोलमा करे के कि हमने यहाँ आए इस दुनिया में काम करके इन्हीं में से जिए के सबके चला हित में काम करे के हई एगो सबसे बड़ा संदेश
1: जो हाँ तो आज के कार्यक्रम बिल्कुल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जहाँ पर एगो ऐसन उद्देश्य एगो ऐसन ह्यूमन वैल्यूज के साथ है सोसाइटी डेवलप हुआ था और आज के नहीं है पिछला 113 बरिस से जस्ती हो गल बा यानी 1913 से शुरू हुआ ये मूवमेंट और आज तक ये बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से वो लोगों को जोड़ रहा है किस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहा है और इनका उद्देश्य बस यही है कि किस तरह से समाज में हम एक ऐसी शांतिमय सोसाइटी स्थापित कर सके जिसमें से लोग अपनी आर्थिक परिस्थितियों से जूझकर आगे निकलें साथ ही साथ ना केवल परिवार का विकास हो समाज का विकास हो पर साथ ही साथ देश का भी विकास हो यानी एक ऐसे उद्देश्य के साथ वे आगे चल रहे हैं जहां पर कदम से कदम मिलाते हुए देश के विकास में अपना सहयोग दें तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को एक गीत के ब्रेक के साथ जोड़ते हैं वैसे आपको ये भी बताते चले इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है तकनीक पर हमारे साथ बने हुए हैं फैजान साथ ही साथ यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और हमारे प्रोड्यूसर जिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बस साथ देते रहिएगा अभी थोड़ी ही देर में एक गीत के ब्रेक के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं

0: हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, जो पहली जुलाई को मनाया जाता है। पहली जुलाई नहीं, पर पहले शनिवार, जुलाई महीने का पहला शनिवार, और इस साल मनाया गया 4 जुलाई को। अभी थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि हमारे मॉरिशस में कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन से ऐसे कार्य आयोजित करता है इस कार्यक्रम को या इस दिन को यादगार बनाने के लिए। पर उससे पहले हम जरूर जानना चाहेंगे कालीचरण जी से कि सहकारिता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावल जाला है, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में कौन जागरूकता बढ़ावे खातिर कौन कौन प्रकार के उ कार्य करेला, कौन सहायक प्राप्त होला।
1: तो है जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2026 में जो मन लीजा, तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कर कोऑपरेटिव डिविजन्स धरला। ए 4 जुलाई के हमने के एगो रेफ लेइंग सेरेमनी, एगो डिपो दे जेप कर लीजा, एगो मोनिमा कोऑपरेटिव पे बाते जॉन कंपनी पर लुमे। तो वहाँ धरना हाउ सामने के शनिवार रहल, तो वहाँ सब कोई गरीजा। तो हमने के हर बरिस हम के तरह एगो एगो दो ट्रेडिशन ना वो कुछ ही माँ की हमने जाला था वो कच्चा में ऐसे ठीक करी रेफ ले ये माँ का हाई एगो एगो इवेंट में रहल। दूसरा जहाँ हाई जहाँ जोन कंस्यूमर्स वर्सेस कंस्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन हा, तो वो लोग एगो प्रोमोशनल सेल करन जा।
0: अच्छा,
1: धरला हमने के जोन कहा रा लाभची को बेगाची कंस्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जोन हा, तो हाउस से मेनवा में धरला वो लोग हफ्ता में तनी प्रोमोशंस देलन जा और का मेंबर्स आ सब पब्लिक जनरल लोग के जब में सस्ता में से ना सब चीज किन जा
0: मिले। हाँ,
1: तो आवरे को फेडरेशन जोन हा का नाम हा मॉरिशस कोऑपरेटिव आर्किटेक्चरल फेडरेशन। तो ये जस्ती एगो फेडरेशन है जेकर 110 से जस्ती ये थी और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जो गन्ने के खेत में वो लोग काम कर रहे जा। तो ये है अच्छा एक 10-12 गो सेल्स पॉइंट बाटे जहाँ एग्री इनपुट्स बेचे ला जा। तो ये लोग है सब अच्छा में धरला हो हफ्ता में प्रोमोशनल सेल कर जा, जब में जितना कोऑपरेटिव सोसाइटी बाटे सस्ता दाम में सिकंदा सब किने हवे अपन लेके अपन अपन नथी में सिकंदा अच्छी करे।
0: अच्छा, और जैसे लोगन के कैसे कैसे एफओ में करल जाला, काहे के है जा पर कुछ भी एफओ माशो पासे कर बता, कैसे आदमी लोग के कैसे जानी कि कुछ एगो एगो एक्टिविटी हो बता हो जा पर।
1: तो हमने के सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो एक्टिविटी रहल है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे वाके, तो 9 जुलाई 2006 में हमने एगो बड़ा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लीजा।
0: अच्छा,
1: वर्कशॉप के और थीम रहल स्ट्रेटेजिक वर्कशॉप ऑन कोऑपरेटिव्स मूवमेंट आई कोडो आर्ट सेंटर में। हमने के धरला सब जो सेक्टर सेक्टर्स में जो इकोनॉमिक जो कोऑपरेटिव्स बातें धरला एग्रीकल्चर बातें एग्रीकल्चर में बातें धर थी वेजिटेबल प्रोडक्शन, फिशरीज, डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल सेक्टर। तो हमने के एगो धरला स्पेसिफिक रिसोर्स पर्सन रहल और हवे दिनवा सोती जहाँ कौन दिशा में हमने सकब सजाई।

0: नारद गमने चाम की छाप एगो अच्छी काम करके एगो स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर कोऑपरेटिव जे भाई जो चुनाव थी जो बात है जो चैलेंज जो बात है जो अपॉर्चुनिटी जो बात है कैसे हमने के चला है कोऑपरेटिव मुवा के आर आगे बढ़ाई बस की जाने अभी के समय में बहुत चैलेंज ढेर बाते
1: नहीं और चैलेंज भी हुआ था और समय भी बदला था अभी तो देख कैसे कैसे नवा तकनीक चलावा था नवीनीकरण आवा था
2: टेक्नोलॉजी
1: सौजे हुआ था तो है भी शामिल करल जाला
0: हाँ तो हमने के है माध्यम से हमने सोची ला सा की कैसे कोऑपरेटिव जाने कोऑपरेटिव मूवमेंट के चला हमने के तीन गो चीज बहुत महत्वपूर्ण जब आगे बढ़ी पहला है डेवलपमेंट दूसरा है इनोवेशन और तीसरा है इन्वेस्टमेंट आई थिंक वो चीज बाजे कोऑपरेटिव मूवमेंट जे जितना सोसाइटी जन बातें जो हाई में अच्छे कोई जैसे जाके आके आई थिंक वो चीज चलो के चला करेंगे तो हाई से मीडियम से धाबी के समय में थी डिजिटलाइजेशन तो वो लोग के बिजनेस एफिशिएंसी करके जैसे आगे बढ़ाई के और हाई डाइवर्सिफिकेशन करके वो लोग के चाहेला हाई माध्यम से जाएगी डिजिटलाइजेशन जब उन लोग के जैसे सुविधा मिली उन लोग के बिजनेस जैसे आगे आए और जैसे नफा मिली तो ये हमने के जरिए साझे के प्लान में कुछ ऐसा हिस्सा डाले के कैसे हमने है सब डिजिटलाइजेशन जो बातें एक जो ग्रीन इकोनॉमी बातें सर्कुलर इकोनॉमी बातें और हाई कहते आई थी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर बातें फूड सिक्योरिटी हाई सब में हमने के जानी फोकस हमें से हाई सब नेचर में जो सेक्टर जो बातें हमने को कोपे का चीफ के आर आगे बढ़ा के और नवा चीज़ आ रहा है तो नवा चीज हमने खोज जान में आई जो जवान आदमी यंग पर्सन लोग खोज जब में जस्ती
1: और जैसे अभी बोला था वो तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है या जो ऑफिशियल रहेला वो जो जितना भी हमने के कोऑपरेटिव के मेंबर्स हवन सा उनकरा एगो लेजिकाशन देवेला एगो सिखावेलन सा कैसे करेलन सा
2: तो मैं इस पे ज्यादा जानकारी
1: हाँ जी
2: ये जो न सर्विस बा पांच गो से बेसे बा
1: अच्छा
2: कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर ओके ओली मबा रिदे जरापोर सेंट पियर हेनरिएटा और रोजबेल
1: अच्छा
2: ई में मान ला एगो कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर एगो वन स्टॉप शॉप बा सब सर्विस मिले कोऑपरेटिव के ओके जैसे कोऑपरेटिव के सहायता दे लन सा अपन कोंट प्रिपेयर करे के कोऑपरेटिव के लॉजिक कोंट के लॉजिक करे
1: अच्छा
2: ओके कोऑपरेटिव के सलाह देवे लन सा एडवाइस काउंसलिंग कोऑपरेटिव के ट्रेनिंग देवे लन कैसे कोऑपरेटिव के चलाए के कैसे अपन कोंट रखे के
1: शुरुआत कैसे करे के
2: हां शुरुआत कोऑपरेटिव के निगरानी भी करे से बेसिक के ऑफिसर चाहे ला सुपरवाइज करे के कोऑपरेटिव वाके और जैसे भाई कालिशन बोलक कोऑपरेटिव के लाफो देवे लंसा कोऑपरेटिव खातिन तरह तरह के योजना जोन जोन स्कीम बा उसे बेसे परि
1: कैसे लाभ उठाए
2: हाँ कम्युनिकेट करने से कोऑपरेटिव के
1: तो है जोन हाँ कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर द्वारा है सब सेवा प्रदान करावल जाला अच्छा यानी कोनो भी मतलब है जब शुरुआत करत हुआ तो है सब इनफॉरमेशन भी दिया जाला
2: हाँ सब इनफॉरमेशन दिया जाला कैसे कोऑपरेटिव किस से बेसे से जुड़न हुआ तो वो कॉन्टैक्ट ले ऑफिसर संगे तब सक सर्विस
1: ओके प्रदान सर्विस मतलब शुरुआती से ओकरा है सब सर्विस प्रदान करल जाला हां हां
2: तो ऐसे में वो सकेला अपन कोऑपरेटिव ठीक से नियमन से
1: चलावे सके और मान लग एगो शुरू हो गल कोऑपरेटिव शुरू हो गल गते गते ओकर काम आगे बढ़ता मान लग उनकरा कोनो तकलीफ बीच में चलाल तो उ सखी तोहरा कांटेक्ट करे
2: एग्जैक्ट सब सर्विस कंसेई लॉजिक सब
1: कैसे पस की जानत हुआ ढेर कोई तो नहीं उतना जाने लग सा कि कैसे वो कोंत करी कैसे रेगले करी कैसे पेमो सब करी तो वो सब लेफोमाशो तो हर बगल से
2: तो देखा एगो मच्छी मार वो नहीं सके अपन कोंत करी तो आप उसे कर लन ऑफिस से बेसे के तो असिस्टेंस
1: तो हम ही ले ला तो चला आज के कार्यक्रम में बिल्कुल है भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो सहकारी आंदोलन यानी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हवन सा वो कैसे एगो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के उकरा कैसे कौन भागीदारी द्वारा उकरा कौन महत्वपूर्ण कैसे मिलल जाला
0: आई हमने के कोविड डिवीजन दुना
1: हाँ
0: हमने बहुत बड़ी से एथी करी जाना आई सेंसिटाइजेशन कैंपेन थाई माध्यम से हमने जाला जा सब रीजन में सब इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज में जाला जा वहाँ पर ही सेंसिटाइज करी कि कोऑपरेटिव के कॉन्सेप्ट का है ए हमने के कोऑपरेटिव कितना बड़ी से मोगिस में बातें और उकर सोशल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन कितना हो

0: कितना कुल में जुड़ल बाते तो हम सीखा ला जा कि एगो धर लो हमने एगो संचेषण कर ला जा में हई हमने के मॉडल कोऑपरेटिव मॉडल बा जमें आदमी हम आपके जितना बातें अच्छे अच्छे लोग सकें जा हई यूटिलाइज करी हई माध्यम से अपन बिजनेस करी जान ना एगो बिजनेस करके हबी के दिन में बहुत मुश्किल है ओकर कैपिटल ओकर एक्सपीरियंस चीज और सबसे चाह जाने कि कैसे चला ऑर्गेनाइजेशन करके मैनेजमेंट करेगी तो हाँ ये जब कहते स्पीकर कर जहाँ हमने हमने के रहला हमने के ऑफिसर रहला कबू को बोले जाए सफा के ऑफिसर तो हम ये सब माध्यम से लोग एक्सप्लेनेशन दे ला जा कैसे कब तीन मॉडल चढ़ा लोग आदुप्ति करेगी जिनमें लोग निमन से अपन कमाल करते हैं
1: जी। यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ कालीचंद जी साथ जुड़े हुए हैं और आज उनकी तबीयत कुछ यानी उनको भी सर्दी खांसी है, तो बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए।

0: आज हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव पर। जी हाँ, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो मनाया गया पहले शनिवार को, जुलाई महीने का पहला शनिवार डेडिकेटेड है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव दिवस के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में हम ये भी ज़रूर जानेंगे कि इस वर्ष के बजट की जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव क्षेत्र में क्षेत्र के लिए बजट 2026-2027 में घोषित प्रमुख उपाय कौन कौन से रहे, आइए जानते हैं कालीचरण जी से।
1: बजट 2026-2027 खातिर की सरकार हमने के जो नई स्कीम है बूस्ट लोकल प्रोजेक्शन स्कीम, जैसे हम बोली शुरू में कि यही सबसे पॉपुलर स्कीम है, तो हाइयो बरिस हमने के सरकार दिलक धरल 7 मिलियन रुपीज कि हई अच्छा स्कीम कोऑपरेटिव के जमे बेनिफिट करें जा। तो हमने के स्कीम लॉन्च होगा 300,000 देते हैं सबके 80% मैक्सिमम से वो मैक्सिमम धर दिया 300,000 देते हैं सब को वो ग्रांट है लोन नहीं ग्रांट मिनिस्टर हई कोऑपरेटिव डिविजन्स जो जो नई सुविधा दे होता है जो स्कीम जमे अपन नया एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट उनसे किने तो वो लोग हई हई पैसा जो सरकार दे होता है लोग हई लिखे पा किन के अपन जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है एक जस्ट नियम से ऑर्गेनाइज करे। हाई एगो स्कीम दर 6 बरिस से ई चल जाओ दूसरा स्कीम है डिजिटलाइजेशन स्कीम और एगो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर स्कीम है तर लगभग 12 मिलियन रुपीज मिलल बाटे जमे हमनिके जितना है कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो लोग से सबसे अपन सॉफ्टवेयर डिजाइन करे और अपन इंस्टॉलेशन करे जमे वो लोग के बिजनेस एफिशिएंसी जस्ती आगे बढ़े
0: आगे बढ़े।
1: हाई हमनिके मेन ऑब्जेक्टिव है डिजिटलाइजेशन खातिर। पसी जाने अभी के समय में देखो जितना बातें है सोशल मीडिया है जितना कंपनीज बातें स्मॉल और बिग कंपनीज डिजिटलाइजेशन जेने रही तो लोग के धरल मार्केटिंग और के काम नहीं मन से
0: नहीं चलेगा।
1: तो हाई हमने फोकस करने जा हाई बिग जो में कि हाई डिजिटलाइजेशन से माध्यम से और अपन एफिशिएंसी जस्ती इम्प्रूव करें जा। और एगो बातें हमने के एगो ये स्कीम नहीं है, ये एगो प्रोजेक्ट है एग्री फूड वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो हाई हमने के छोटे एगो प्रोजेक्ट से आने के जिनमें जितना है एग्री वेस्ट रहेगा धरला हमने इन कोलाबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस देखा सब कैसे कोऑपरेटिव में एगो पॉजिटिव मिली एगो बेनिफिट्स मिली जिनमें सेकेंड चाहे जो वेसवा है एक रेवेन्यू में ट्रांसफॉर्म करेगी। तो हाँ एगो प्रोजेक्ट देखा जब देखा सब कैसे है बरिस हमने के माध्यम कोऑपरेटिव से यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से कैसे लोग अच्छा आगे बढ़ेगी। तो धरला अभी एक महीना में से कम जगह हाइचा शुरू करें हम। और एगो बात है इरीगेशन सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम। तो हाँ एगो स्कीम है धरला जो अथी है जो इरीगेशन सिस्टम जो सेवी करे जा कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो प्लॉटे जा है ऑनियंस पोटेटोज तो लोग बहुत कंस्ट्रेट बातें लोग के धरला चैलेंज ढेर बातें आई वाटर सप्लाई खातिर। तो हमने हाँ स्कीम खातिर जब दे ला जाए तो लोग के सकें जा अपन जो वाटर पंप है आई सोलर माध्यम से सकें जा हाई अच्छे करे जमे लोग के हाउ जो पंजा जन मिली लोग के सकें जा अपन इच्छा इरीगेशन करे जमे लोग हाई वो सपोर्ट देते हैं जमे लोग के कॉन्स्टेंट वहाँ पानी के कॉन्सेप्ट नहीं रही
0: यानी हर क्षेत्र के ध्यान में रख के हाई काम करल जाता
2: जो कॉस्पा इरीगेशन वाटर पंप के चलाए गए से भी बहुत पैसा चाइना पे के तो सोलर पैनल के रिड्यूस
0: करे लंसा तो एगो एगो देखबा तक मजा उ रेवेन्यू में उक मजा जैसे जितना निवेश करा था उ उतना निवेश नहीं करे के पड़ी उतना मतलब कमती उतना पैसा पैसवा भी बची। हाँ और जैसे अभी आगे बढ़ाता ही था हाई जो हाई ले तेरोआ मॉरिशियन कोऑपरेटिव सेक्टर एकर महत्व तनी हमने के समझाइए कालीचरण जी।
1: हाँ हाई बरिस 2026-2027 में हमने के एगो बजटरी मेजर्स जो अनाउंस करल जा लेते हुआ मॉरिशियन कोऑपरेटिव लेबल प्रोजेक्ट। तो ई एगो लेबल है कोऑपरेटिव के जमे हमने के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना एक में सब आइडेंटिटी है।
0: हाँ हाँ
1: ये धरा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन तनी हट के बातें कर में।
0: अच्छा
1: तो हमने को जाना कि जब कोऑपरेटिव अपन जितना प्रोडक्ट्स बनावेला वो लोगों के चला एगो कोऑपरेटिव आइडेंटिटी मिलेगी सेपरेट आइडेंटिटी जमें जब मार्केटिंग के ढंग से धरला पब्लिक इन जनरल जान जा हाई एगो प्रोडक्ट आवाता कोऑपरेटिव सोसाइटी से तो हमने को जैसा हाई प्रोडक्ट एगो एगो लेबल खरी खातिर जमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितना इन्फॉर्मेशन रही प्रोडक्टवा में सोर्स से लेकर मार्केटिंग तक सब वही में रही। तो एगो

0: क्लायंट जाए ऊ जान जाए कि कंपनी प्रोडक्ट क बनल बाते जैसे एगो ट्रांसपेरेंसी रही एगो ट्रेसेबिलिटी वो रही एकर से एकर में आर बातें एगो थी हमने के इन कोलाबोरेशन विथ एफसीसीआई मॉरिशस चैंबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो हमने के बहुत योगदान दे होता ऐतिहा करे कि हाई कंपनी आ जाती वाक खरी खाती तो हाई जब हमने धरना जा हाई बड़ी से धरना हो जाए हमने की आइडेंटिटी तो ढेर कॉपी गई थी सकल जा अपन प्रोडक्ट रही इजीली सुपर मार्केट मार्केट बातें
1: मार्केटिंग
0: मार्केटिंग करी हाई वो आज इतना जब नहीं रही तनी मुश्किल हो जाए
2: मुश्किल हो
1: जाए
2: बिल्कुल बिल्कुल जैसे हाई मार्केट मार्केट में जितना जस्ती लोगों के वो आचे करी हाँ और जैसे अभी टेक्नोलॉजी के तू बात करत हुआ और सस्टेनेबिलिटी के तू बात करत हुआ तो किस प्रकार से कोऑपरेटिव जो समिति है जो सोसाइटी है वो कैसे वो भविष्य के यानी फ्यूचर के कैसे वो फॉर्म करेला कैसे शेप देवेला कैसे आकार देवेला
0: अभी के समय में जो टेक्नोलॉजी वो बहुत हमने के बिजनेस ऑर्गेनाइजर्स के बहुत फैसिलिटीज दे वेला धरना एगो उधार के साथ पहले वहाँ एग्रीकल्चर कर तो अभी के समय देखेला ढेर कोई ड्रोन से भी कर जा ड्रोन सिस्टम से भी कर जा आइडेंटिफाई करके कहाँ की हो एग्रीकल्चर जो बातें उतना नहीं मसा नहीं जमाता और कैसे चल हमने के पेस्टिसाइड्स एथी करके तो हाई टेक्नोलॉजी को जाने के की कॉपी गई थी जब से भी करे अपन एथी में अपन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में तो के धरना जस्ती फैसिलिटीज मिलेगा
2: हाँ।
0: एगो और हाई जो खड़ा डिजिटलाइजेशन हुआ एक जब लोग निमन से के यूटिलाइज करें जा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ना लोग के जस्ती निमन से चली बस हम लोग के जाना हाई अभी के समय में डिसीजन मेकिंग हाली से लेके
2: स्पॉन्टेनियस
0: रहेगी स्पॉन्टेनियस आर इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल
2: बिल्कुल
0: मिले के हाली से जब हाई मानी डिजिटलाइजेशन जो रहेला तो लोग हाई दुगो इच्छा से लोग सकी अपन डिसीजन मेकिंग आर जल्दी से बंद जस्ती एगो अथी करे एगो डिसीजन ले कि कौन सा अथी लेके जब ये लोग के सिस्टम जस्ती अमेरिकन हो आर वो लोग के जस्ती आउटपुट
2: मिली हाँ और चलो हैजा राम दोहल जी से जानब जा कि कौन एक्ट रेगुलेट करल जाला है खासकर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर
1: जैसे कि सब सीखते हमें एगो कद लीगल चाहिला ओके रेगुलेट करेंगे तो मॉरिस में कोऑपरेटिव एक्ट 2006 वही कद लीगल बा कोऑपरेटिव के चलाई के सब प्रोविजन में सब प्रोविजन में बा

0: एगो कोऑपरेटिव के तो शुरुआत कर दर और जब और आदमी हेली हो में को मा जब और मॉम बनी त ओकर कैसे रेगुलेट करबा हाई भी एगो सिस्टम रहेला
1: त ओ कोऑपरेटिव के ओकर रूल्स बा
0: अच्छा
1: ओकर रूल्स बा त कोऑपरेटिव ओ अपन रूल्स के पारे ओ मॉम के कैसे मॉम के ऑनरेस्टे करे के कैसे सब
0: ट्रेनिंग
1: सब दे कोऑपरेटिव के कैसे नीमन से चलाए के
0: और एक बार फेरो से तू बोले सकबा कहां कहां पर है कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर पावल जाला
1: पोली में बा रिवियर du Grand Port, Saint-Pierre, Henrietta और Rosebel में बा
0: अच्छा मतलब है पांच मेन जगह हा पूरे देश भर में हां जो जगह से तू भीरी हवा हव जा जाके तू कर सके
1: तो कराची जुड़े रंदा उसे बेसे से वो जाए
0: जाके भीरी में जो बा वहां जाके
1: भाई कालचंद सब सर्विस सब स्कीम सब हुई वहां
0: पर तोहरा प्राप्त हो जाए और चलो जानब सर कालीचंद जी से कि जो सहकारी समिति यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक बारे में जनता और विशेषकर जो युवा वर्ग हवन जो यंगस्टर्स हवन ओकरा तू कैसे कौन संदेश देब जेकर से उतनी जस्ती ओंको आज होई हई में जुड़े के
2: हई हमने के कोऑपरेटिव मुबा जो हा जैसे हम शुरू में बोली 100 बरस से जस्ती हा तो हमने के दुगो मेन कंस्ट्रेंट हा बाते दुगो मेन चैलेंजेस बाते कि हमने के मेंबरशिप जो हा लगभग 80,000 नती मेंबरशिप एजिंग तो लोग के प्रॉब्लम को चाहिए लोग के सबसे बड़का अति एजिंग अति और जो लोग वृद्ध हो ले जाता और ही लोग के मेंबरशिप घट ले जाता जे ऐसे ट्रेंड ऐसे जाता तो हमने के कोऑपरेटिव सेक्टर से केला तो 10-20-25 बरिस में ढेर घट जाए या तो एक इम्पोर्टेंस जो रही नहीं उतना नहीं रही तो हम नहीं खोजते मिनिस्टर की आगे कोऑपरेटिवेशंस कि जस्ती हम भी चला काम करे के हाई थी पर सेंसिटाइजेशन पर एनकरेजमेंट तो हमने मिनिस्टर में ढेर प्लस जा कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी में ताकि हमने सेंसिटाइज करें अति यंग पर्सन खाती जवान लोग खाती कि हाई इच्छा में आवा हाई मॉडल ऑफ बिजनेस जो कोऑपरेटिव एक इच्छा ना अडॉप्ट करे के और कौन सुविधा कोऑपरेटिव डिविजन्स देवा था जब में ये लोग जस्ती आगे बढ़ी जब हमने हाई इच्छा ने कर हाई सेंसिटाइजेशन में तो हमने के धरला एगो खतरा बात है कि हमने के कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे बातें हम भी अपन कोट करे सब चीज कमा करे
0: इनोवेशन
2: आने के उनके इन्वेस्टमेंट जब जस्ती रही और उनके प्रमोशन एंड डेवलपमेंट करके जब मैं हमने खोजा था कि हाई कोऑपरेटिव सेक्टर जस्ती अति एक्टिव रही और प्रो ग्रोथ रही उनके कंट्रीब्यूशन रही तथा फूड सिक्योरिटी में कोनो अथी में कोनो सेक्टर्स में जस्ती आगे रही तथा ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर
0: नहीं बढ़ सके और जहाँ रह जहाँ रही वो हौजे रह जाए आगे आगे बढ़ावे खातिर जैसे तकनीक के साथ प्रौद्योगिकी के साथ जैसे नुवो इनोवेशन के साथ बहुत आगे बढ़ता और जोन भी सेक्टर रही यानी कोऑपरेटिव जैसे राम तोहल जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो आज मॉरिशस में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करते हुए और आज देखा गया है कि ये कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक तरह से देश के विकास में अपना

0: सहयोग दे रहे हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए भी बिल्कुल हमारे ऐसे अफसर हैं जो ऐसे आधिकारिक अफसर हैं जो इस कार्यक्रम में उनके साथ जुड़ते हैं, उनको ये सही इन्फॉर्मेशन सही एजुकेशन देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक बार फिर आइए जानते हैं राम तोहल जी से कि अगर कोई कोऑपरेटिव फॉर्म करना चाहे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ जाना चाहिए और बेशक अगर कोई हॉटलाइन नंबर वे शेयर करना चाहें तो इसके बारे में भी आइए जानते हैं ये आखिरी जानकारी।
1: तो कोऑपरेटिव के फॉर्मिंग करेंगे कम से कम 5 लोग 5 सदस्य चाहिए, मिनिमम शेयर कैपिटल 5,000 रुपया चाहिए,
0: एमवीसी
1: करेंगे, एगो एप्लीकेशन फीस बा 1,000 रुपया चाहिए पे ये करेंगे, एगो फॉर्म एप्लीकेशन बा चाहिए भरे के उसमें सब डिटेल बा, नाम कोऑपरेटिव के नाम बा ओकर ऑपरेशन रीजन ओके कौन कौन एक्टिविटी करी कोऑपरेटिव हुआ के ओके चलाए ओके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजोरियर और मॉम के सब डिटेल बा ओकर एड्रेस ओकर आईडी नंबर और चाहे ला फोटोकॉपी ओकर आईडी फोटोकॉपी प्रूफ एड्रेस सब चाहे ला मिनिस्टर एगो यूनिट बा रजिस्ट्रेशन यूनिट ता वहां पर फॉर्म चाहे ला सबमिट करे के तब जाके रजिस्ट्रार वो सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और सब ठीक तो वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे।
0: यानी जैसे तू बोलन कि है सब डॉक्यूमेंट जब पारे रही और जितना मॉम है में जुड़ल रही ओकर सब एफोमाशन जैसे तू बतलैलन वो सब पारे रही तो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंतर्गत है तोहर जो कार्य है वो संपन्न हो जाए और तोहरा जब वेरिफिकेशन सब क्लियर हो जाला तब तोहरा एगो सर्टिफिकेट
1: रजिस्ट्रेशन मिली तब सकेलन सा मामला
0: तो आज के कार्यक्रम बिल्कुल इसी पर आधारित था और राम तोहल जी कोनो निमगो बा जेकर से कुमजे एगो हॉटलाइन नंबर या कोनो रही तो पता जे करे सकबत
1: 405-0770
0: ओके तो हई निमगो वा पर तू कॉन्टैक्ट करे सकब और हई निमगो पर तोहरा सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जे तू खोजत हवा एगो कोऑपरेटिव फॉर्मे करे के तो जरूर हई पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तू जाए सकब अपन भीरी के जो सीबीसी यानी कोऑपरेटिव बिजनेस सेंटर जाके तू वहाँ जाके अपन रजिस्ट्रेशन करावे सकब। तो आज के जो कार्यक्रम रहल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पर आधारित रहल जो पहला शनिवार के दिन मनावल जाला जुलाई महीना के पहला शनिवार और इसी के साथ हमारे टेक्निक पर हमारे साथ जुड़े रहे फैजान और प्रोडक्शन असिस्टेंट रही दीपशिका और साथ ही साथ प्रोड्यूसर रहे जिनेश और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और खासकर हमारे दो अफसर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से यहाँ पर उपस्थित हुए श्री कालीचरण जी और श्री राम तोहल जी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और पुनः उपस्थित रहेंगे एक और ऐसे कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।
1: नमस्कार।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ। आपको नमस्कार याचना।
1: नमस्कार, हम सुनिए, सुनने वालों को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार सुनिए। कुछ कैदियों को फिल्माया गया जब वे सिगरेट जैसा दिखने वाला कुछ बना रहे थे। एक मोबाइल फोन के जरिए बुबासें की जेल के दीवारों के पीछे ये दृश्य कैद किए गए। ऐसी वीडियो जो जल्द ही वायरल हो गई, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सिगरेट को छोड़िए बल्कि मोबाइल फोन ही कैसे अंदर गया जब इसकी अनुमति जेल के भीतर नहीं है। देश में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत बनाने की दिशा में आज सुबह डॉक्टर ब्रूनो चोंग स्वास्थ्य केंद्र में जेराल्डिन टूसैं ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में स्क्रीनिंग से लेकर मानसिक और शारीरिक सहयोग प्रदान करने तक सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये केंद्र उन महिला के नाम से जाना जाएगा जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ संघर्ष करके कई अन्य महिलाओं को प्रेरित किया है। कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। इसका प्रसारण NBC 11 और NBC Play पर किया जाएगा। विदेश में जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो चुका है, तब से अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर घातक हमले किए। ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर ऊर्जा और पानी के डिस्टिलेशन प्लांट्स को। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। दोस्तों ये सप्ताहांत वर्ल्ड कप का आखिरी सप्ताहांत है। आज तीसरे स्थान के लिए मैच खेला जाएगा, आज नहीं कल सुबह 1 बजे मैच खेला जाएगा बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, और कल रात 11 बजे मैच होगा फाइनल का बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना। तो 6 हफ्तों के लिए मेक्सिको, यूएसए और कनाडा दुनिया का केंद्र बने हुए थे, फुटबॉल स्टिक और मीडिया वाइज केंद्र, यानी कि दुनिया भर के खिलाड़ी, दुनिया भर के फुटबॉल सपोर्टर्स अपनी अपनी नेशनल टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां पर एकत्र हुए। एक तरह से देखा जाए तो हमारा देश भी एक छोटा वर्ल्ड है जहां पर विभिन्न इलाकों के, विभिन्न कॉन्टिनेंट्स के, महाद्वीपों के लोग यहां पर आकर बसे, और जब वे यहां पर आए तो उनके साथ जिस जगह से, जिस संस्कृति से वे आए, उन संस्कृतियों के नाम वे लेकर आए, और उन्होंने जिन जिन जिन जगहों पर वे बसे उन उन जगहों को वैसे नाम प्रदान किए। आज हम फिर से उन्हें बहुसांस्कृतिक नामों पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, आपसे चंद सवाल पूछेंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए आप हमें फोन करेंगे। और जो पहला सवाल हम रखते हैं

0: बहुत ही आसान सवाल है देश के दक्षिण में देश के दक्षिण में एक ऐसी जगह है एक ऐसा गांव है उसी नाम पर उस गांव के उसी नाम पर भारत में एक तीर्थ स्थान है भारत में एक तीर्थ स्थान है आपको हमें मॉरिशस के दक्षिण के उस गांव का नाम बताना है बाय कॉलिंग ऑन 402 90 70
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया

0: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रोग्राम गीत गाथा देश की। आज हम उन गांव उन शहरों उन जगहों की बात कर रहे हैं जिन जगहों के साथ विश्व भर में दुनिया भर में वैसे ही नाम की और जगह हैं अन्य देशों में। और हमने आपसे पूछा कि देश के दक्षिण में एक ऐसा गांव है उसी नाम से भारत में एक तीर्थ है, आपको हमें बताना था उस गांव का नाम। और देश के दक्षिण मॉरिशस के देश के दक्षिण में जो गांव उस प्रकार का है जिनके साथ भारत के तीर्थ स्थान का नाम जुड़ा हुआ है वो है बनारस। बनारस जो भारत में अब वाराणसी नाम में परिवर्तित हो चुका है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, गंगा के तट पर पाए जाने वाला ये तीर्थ स्थान जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और सभी सनातनियों के लिए एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। और जहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाकर जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जहाँ पर पाया जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव भोलेनाथ काशी विश्वनाथ को समर्पित ये मंदिर और जिसके साथ रामचरितमानस बहुत ही इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जहां पर सारनाथ भगवान गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम प्रवचन दिया था, ये सब बनारस से जुड़े हुए हैं। और हमारे देश में कांजाब के नजदीक में पाया जाता है बनारस। सो ऐसे ही और जगहों के नाम लेकर हम आपके सामने आएंगे। आप सुनते रहिए गीत गाथा देश की संजय के साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर।
1: नफरत

आखिर हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम अपने देश से और भी ज़्यादा प्रेम करें। वैसे तो सभी मनुष्यों के दिलों में अपने देश के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत आस्था है, लेकिन साथ ही साथ इस युग में जहाँ पर सब ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रभाव है, तो हम कभी दुनिया को देखते देखते अपने देश को भूल जाते हैं। इस प्रोग्राम गीत गाथा देश की का मकसद है कि हम अपने देश के बारे में ज़्यादा जानें और जानते हुए इस देश का इतिहास ज़्यादा जानते हुए हम देश के प्रति अपनी भक्ति को और भी सुदृढ़ बनाएं। हम बात कर रहे थे बनारस की। बहुत से कम लोग जानते होंगे कि भारत में तो है बनारस, लेकिन आजकल वो वाराणसी नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा स्पेन में भी एक जगह है जिसका नाम है बनारस, या स्पेन में भी ऐसा है। इसके साथ हम पहुंचते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। सवान डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर हम पहुंचते हैं फ्लक डिस्ट्रिक्ट में। फ्लक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव है उसी

गांव के नाम पर रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर में एक बहुत ही विशाल बहुत ही जाना पहचाना शहर फ्लैग डिस्ट्रिक्ट में गांव है और उस गांव का जो नाम है उसी नाम का एक बहुत ही बड़ा शहर है जो रशिया और यूक्रेन के सरहद पर पाया जाता है आप हमें फोन करके बताएं हम किस शहर की बात कर रहे हैं 402 90 10 पर

0: उमा जी आप शिविर गए की रहने वाली हैं?
1: मैं
0: एक्वायर के रहने वाली उमा जी। सो उमा जी, हमने हमने सवाल किया कि फ्लक डिस्ट्रिक्ट में आप भी तो फ्लक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हैं एक्वायर।
1: हाँ हाँ जी हाँ।
0: सो फ्लक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव आता है जो नाम है उस गांव का, उसी नाम का एक शहर है जो यूक्रेन और रशिया के सरहद पर पाया जाता है, ब्लैक सी पर पाया जाता है, और जहाँ पर वो पाया जाता है उस इलाके का नाम क्रीमिया है, और साथ ही साथ क्रीमिया यूएस, लेकिन साथ ही साथ यूएसए में, यूएसए के कैलिफोर्निया में भी उसी नाम का एक शहर पाया जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मॉरिशस के किस गांव के बारे में बात करें? हरियाली है वहाँ का, वहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। लाल माटी? हाँ, वहाँ पर लगभग 5,700 लोगों की आबादी है, और जब हम कोची मितिया से निकलते हैं और बिले की ओर जाते हैं, वहाँ से गुजरते हैं, तब उसके बाद आता है केवल नगर, केवल नगर के बाद आता है बिले अगलिया से, आई थिंक ओलिविया
1: का,
0: जहाँ पर आप रहती हैं।
1: हाँ, जहाँ पर मैं रहती हूँ।
0: और वही नजदीक में बेलवेदिया भी है। जब हम ड्राइव करते हैं तो उतना ध्यान डालने को अवसर नहीं मिलता, क्योंकि हमको सड़क पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब हम बस में ट्रैवल करते हैं और ऊंचाई पर होते हैं ना, तब तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है।
1: अच्छा लगता है।
0: वाकई
1: बिल्कुल सच कह रहे
0: हैं। हाँ, वाकई वाकई बहुत ही खूबसूरत हैं, और इन जगहों के नाम भी, इन नामों के पीछे जो इतिहास है वो जानकर बहुत अच्छा लगता है। सो उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने साथ निभाया, और आपके जरिए लोगों तक ये जानकारी हमें पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर से मिलेंगे। जय मॉरिशस।
1: जय मॉरिशस।
0: जय मॉरिशस।
2: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता।
3: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
2: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी है, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
3: सोचने दो।
2: पूरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े, और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
3: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
2: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता, तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
3: तुम मुझे प्यार करते हो।
2: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
3: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
2: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
3: प्यार करते हो ना?
2: पर जरीन, तुम
3: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे तुम।

4:45 आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम गीत गाथा देश की। आज हम मॉरिशस की सैर कर रहे हैं और जगहों के नाम और शहरों के नाम से जुड़े हुए जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। अब की बार मॉरिशस के एक शहर का नाम ढूंढ रहे हैं। मॉरिशस के एक शहर का नाम ढूंढ रहे हैं और उसी नाम पर यूएसए में, यूएसए के एरिज़ोना स्टेट में एक शहर है जो यूएसए का पांचवा सबसे बड़ा शहर है और क्षेत्र पर फल में वो शहर उसके जुमेल, उसके ट्विन शहर के साथ मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो आप बताएं मॉरिशस के किस शहर की बात कर रहे हैं बाय कॉलिंग ऑन 402 80 70। अब तो ये सवाल बहुत ही आसान होगा, है ना?

0: ने कहा था कि ये सवाल बहुत ही आसान है और आपको सही जवाब झट से मिल जाएगा। चलें हम इनसे मिलते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका शुभ नाम?
1: शिवानी।
0: शिवानी कहाँ से?
1: लावांचियों
0: से। शिवानी जी, शिवानी जी आप बताएं, हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो शहर कौन सा है?
1: पर्डन?
0: सवाल का जवाब क्या है?
1: फिनिक्स।
0: फिनिक्स।
1: हाँ।
0: आप यकीन के साथ कह रहे हैं फिनिक्स?
1: हाँ हाँ। फिनिक्स? मेरी बेटी ने कहा है, शी हैज बीन ओवर देयर एट अरिजोना।
0: वेयर कहाँ पर?
1: या अमेरिका के वो स्टेट।
0: अच्छा, वो वहाँ पर गई हैं अरिजोना में।
1: हाँ।
0: वहाँ पर भी फिनिक्स है, वहाँ पर भी, और फिनिक्स का शहर वहाँ पर बहुत ही बड़ा है।
1: आप, हाँ, उसका आप स्ट्रक्चर है।
0: मॉरिशस के फिनिक्स शहर में गई हुई है?
1: हाँ।
0: एक जगह का, एक जगह बताएं, एक जगह, एक इमारत, एक स्थान की जगह बताएं फिनिक्स में जहाँ पर आप अक्सर जाया करती हैं।
1: वहाँ पर एक मॉल है।
0: मॉल की बात छोड़िए, एक जगह है जहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम, भारत के सांस्कृतिक प्रोग्राम अक्सर चलते हैं।
1: इंदिरा गांधी।
0: यस। हाँ, IGCIC, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, IGCIC। और अभी हाल में एक बहुत सांस्कृतिक प्रोग्राम वहाँ पर चला था म्यूजिक डे के अवसर पर, जहाँ पर बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम चला था, जहाँ पर सेगा भी था, शास्त्रीय संगीत भी था, बॉलीवुड भी था, भोजपुरी भी, मल्टीकल्चरल, ब्यूटीफुल प्रोग्राम, ब्यूटीफुल प्रोग्राम। तो और वो जगह भी बहुत खूबसूरत है, वो जहाँ पर ये IGCIC पाया जाता है। सो ऐसे आपने सही फरमाया। क्या आप जानते हैं कि फिनिक्स शहर के नाम एक और शहर जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं? नहीं? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। यानी कि जब हम फिनिक्स की बात करते हैं तो वाक्वा फिनिक्स साथ में आता है।
1: हाँ,
0: वाक्वा फिनिक्स साथ में आता है।
1: हाँ।
0: और ये दोनों शहर मिलकर मॉरिशस का सबसे बड़ा म्यूनिसिपालिटी है, सबसे बड़ी म्यूनिसिपालिटी है।
1: हाँ।
0: पोर्टविस में जरा लोग रहते हैं लेकिन वो छोटा सा है, वो सीमित है, जबकि जबकि एरिया वाइज वाक्वा फिनिक्स इज द लार्जेस्ट। और इन दोनों का जुमलाज 1963 में हुआ, वाक्वा फिनिक्स एक साथ में आए 1963 में, तब से ये दोनों शहर एक साथ, इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपैलिटी ऑफ वाक्वा फिनिक्स द्वारा होता है। आप जानते हैं कि इसका एक भाग मुका में भी है, मुका डिस्ट्रिक्ट में भी है। पूरा का पूरा वाक्वा फिनिक्स पेनिनियम्स में नहीं है, उसका जो पूर्वी भाग है, ईस्टर्न भाग, वो मोका में पड़ता है, लेकिन ज्यादातर भाग पेनिनियम्स में पड़ता है। सो शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी इतनी इंफॉर्मेशन मिल गया के
0: द्वारा। अपने देश के बारे में जानना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, हाँ।
0: फिर से मिलेंगे। जय मॉरिशस।
1: जय मॉरिशस आपको भी।
0: जय मॉरिशस।

0: Continuous music. RM3.
1: पुराने नगमे.
2: ये है ऑन एम फ्री एमबीसी रेडियो मनोरंजन. सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं. माइक पे मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अजय प्रताप सिंह. पुराने नगमे अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक. इस प्रोग्राम के दौरान हम दो फिल्मों के गीत लाए हैं. एक है इवनिंग इन पेरिस और दूसरा है फिल्म जंगली. सो इस पहले हिस्से में अभी से लेकर 5:30 बजे तक हम आपको सुनाएंगे एन इवनिंग इन पेरिस फिल्मों के गाने और 5:30 बजे से 6 बजे तक होगा फिल्म जंगली के गाने. सो एनिविंग इन पेरिस फिल्मों के जो गाने हैं उसमें आवाज़ें होंगी आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और शारदा की. सो चलिए अभी से 5:30 बजे तक हम आपको सुनाते हैं एनिविंग इन पेरिस फिल्म से लिए गए चंद प्यारे प्यारे गाने. इन गीतों को सुनिए और आनंद लीजिए.

जाना चाहो प्यार है तुमसे और वो कह दे हाँ हाँ तो क्या बात है। जी हाँ, एनी वे इन पेरिस 1967 में प्रदर्शित एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म थी और जिसका निर्देशन शक्ति सामंता ने किया था। फिल्म में शमी कपूर और शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म रोमांस, रहस्य और रोमांच से भरपूर है। कहानी का सारांश, फिल्म की नायिका दीपा एक अमीर भारतीय युवती है। उसके परिवार वाले उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से कराना चाहते हैं, लेकिन दीपा अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना चाहती है, इसलिए वह छुट्टियों मनाने पेरिस फ्रांस चली जाती है। पेरिस में उसकी मुलाकात सैम नाम का एक आकर्षक और खुश मिजाज भारतीय युवक से होती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वे पेरिस के सुंदर स्थानों की सैर करते हैं और उनके बीच गहरा प्रेम विकसित हो जाता है। कहानी में अचानक मोड़ तब आता है, कहानी में ट्विस्ट जब कुछ अपराधी दीपा का अपहरण कर लेते हैं। इसी बीच जो है सूजी नाम की एक युवती सामने आती है जो बिल्कुल दीपा जैसी दिखती है। सूजी एक नाइट क्लब में काम करती है और उसका स्वभाव दीपा से बिल्कुल अलग होता है। दोनों का एक जैसा चेहरा होने के कारण कहानी में रहस्य और भ्रम पैदा हो जाता है। सैम सच्चाई का पता लगाने के लिए दीपा को बचाना और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करता है। कई रोमांचक घटनाओं और संघर्षों के बाद वह सफल हो जाता है। अंत में अपराधियों को सजा मिलती है, दीपा सुरक्षित वापस आ जाती है और सैम तथा दीपा का मिलन हो जाता है। और इस फिल्म के मुख्य विषय है प्रेम और विश्वास, रहस्य और रोमांच, हमशक्ल लुक अलाइक का भ्रम और साहस और न्याय। एन इवनिंग इन पेरिस एक रोमांचक फिल्म है जो अपने मधुर गीतों, पेरिस और यूरोप के सुंदर दृश्यों तथा शमी कपूर और शर्मिला टैगोर के शानदार अभिनय के लिए आज भी याद की जाती है। चलिए इसी फिल्म का और एक गाना सुनते हैं। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

शमी कपूर साहब को इंडियन एल्विस प्रेसली कहा जाता है और उनका स्टाइल ही अलग था। और जब हम एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसी फिल्म के सभी गाने भी चल रहे रेडियो पर, तो आपको बता दें कि यह जो फिल्म है इसमें संगीत का सहारा दिया है शंकर जयकिशन ने और गीतों के बोल हसरत जयपुरी साहब और शैलेंद्र ने गीत को लिखे है। और फिल्म के प्रमुख गीत हैं आसमान से आया फरिश्ता, मोहम्मद रफ़ी की मधुर आवाज़ में, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, रोमांटिक गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ही, आसमान से आया फरिश्ता, अन्य गीतों में शमी कपूर की चंचल।

पहली देखने को मिलती है। रात के हम सफर आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, ये मेरा और बेशक बहुत सारे गाने हैं। और इस फिल्म के गीतों में पेरिस की सुंदरता, प्रेम, रोमांस और यात्रा का आकर्षण दिखाया देता है। शंकर जयकिशन की धुनों और रफ़ी और आशा भोसले जैसे महान गायकों की आवाज़ ने इस फिल्म के संगीत को अमर बना दिया है।

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: पुराने नगमे।
4: So, 5 बजे से अभी तक आपने सुना फिल्म एनी बिलिंग इन पेरिस फिल्म के गाने और अभी शाम के 5:40 हो रहे हैं और इस सेकंड दूसरे भाग में हम आपको सुनाएंगे फिल्म जंगली के गीतों के साथ और फिल्म जंगली में शमी कपूर साहब नजर आए थे इन द मेन रोल एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और जंगली फिल्म जो अपने ज़माने में बहुत अच्छी चली थी ये फिल्म और बेशक लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया और आज भी लोग जब इस फिल्मों के गीत सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है व्हाई नॉट सो यस और इस फिल्म का जो म्यूज़िक था वो एकदम ज़बरदस्त था यस डू यू रिमेम्बर और बेशक इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया अपने ज़माने में जैसे मैंने आपको बताया कि इस फिल्म के जो गाने थे एंड इट वाज वेरी गुड यू नो एंड बहुत अच्छे गाने गीत के बोल और बहुत सारे गाने इस फिल्म में और आवाज़ें होंगी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की और

बेशक जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उन दिनों लोगों के घरों में मॉरिशस में वो टीवी नहीं थी, सो सिनेमा घर था और बहुत कम लोग जा सकते थे क्योंकि उतनी सुविधा नहीं थी जैसे कि अभी के ज़माने में। ऑलराइट, सो बेशक चलिए इसी फिल्म के गाने हम आपको सुनाएंगे, फिल्म जंगली के गाने, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जा जा जा मेरे बचपन, कश्मीर की कली, आया या सुख और दिन सारा गुजारा। तो चलिए अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको सुनाते हैं फिल्म जंगली के गाने।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू। फिल्म जगने के गीत अभी आप सुन रहे हैं और एक गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर साथियों की आवाजों में, दिन सारा गुजारा। और उसी गीत के साथ ही पुराने नगमे। इस प्रोग्राम का समय यहां पर पूरा होता है, ठीक 6 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन। शाम के 5 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू जी। 6 बजे का पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी 6:15 बजे नई सोच प्रोग्राम में। उसके बाद होगा 7 बजे से रात के 9 बजे तक नई सोच। सभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर से आएंगे 6:15 बजे इसी चैनल पर। सुनते रहिए प्यार के साथ MBC रेडियो मनोरंजन। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस
1: बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कैदियों का एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें वे सिगरेट जैसी वस्तुएं बनाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कथित तौर पर बोबासा जेल के भीतर मोबाइल फोन से निकाला गया, जबकि जेल में फोन और सिगरेट दोनों प्रतिबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अनिश्चितताओं के बीच व्यापार मंत्रालय ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के प्रभाव की समीक्षा की। कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, जबकि उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। मॉरिशस में स्टेन कैंसर के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए फ्लक में चट्टे ब्रेस्ट कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन। शेख अलजिन तुसैन के नाम पर इस केंद्र में रोगियों को जांच, मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी। विदेश में कनाडा और अमेरिका के मिनेसोटा जंगलों की आग का धुआं पूर्व और दक्षिण की ओर फैला, इससे शिकागो, मिडवेस्ट, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क प्रभावित। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। कुछ कैदियों को फिल्माया गया जब वे सिगरेट जैसी दिखने वाला कुछ बना रहे थे। एक मोबाइल फोन के जरिए बोबासा की जेल के दीवारों के पीछे ये दृश्य कैद किए गए। ऐसी वीडियो जो जल्द ही वायरल हो गई, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। सिगरेट का छोड़िए, मोबाइल फोन ही कैसे अंदर गया, जबकि इनकी अनुमति ही नहीं है। जानिए इस रिपोर्ट में।
2: सोशल नेटवर्क पर ये दृश्य वायरल हो गए हैं। बोबासा कैदखाने के कई कैदियों को सिगरेट घुमाते देखा गया, तैयार करते देखा गया। इनमें से एक था रोडोल्फ जोंजाक उर्फ गोदेरे, जिसे मादक द्रव्य तस्करी के लिए 30 साल जेल की सजा हुई है। इसके सामने था प्रवेश कानू उर्फ पाचे, जिसे पहली बार के लिए 2023 में गिरफ्तार किया गया था, फिर दूसरी बार 2026 के फरवरी महीने में मादक द्रव्य के मामले को लेकर ही। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक वीडियो को पिछले 12 अप्रैल 2026 को फिल्माया गया था, इसी तरह की एक सैमसंग A16 की मदद से। शुक्रवार को फोन बरामद हुआ। प्रिजन कमिश्नर राशिद अली बिकन ने कहा, शुक्रवार को ही फोन जब्त कर लिया गया। किसी ने इसे एक कूड़ेदान में फेंक दिया था। इस मोबाइल की जांच की गई, क्लिप दिखा। जहां तक दृश्य में पदार्थ पाए जाने का सवाल है, तो तंबाकू और एंटीबायोटिक्स का मिश्रण है, जिन्हें छोटे छोटे पेपर में मोड़ कर रखा गया था। कैदखाने अधिक

0: अधिकारियों के अनुसार इस वीडियो का प्रसारण कैदियों के बीच इस तस्करी पर नियंत्रण के प्रभाव से संबंधित है।
1: La personne ou bien les personnes qui sont derrière ce clip là, je te pointe comment dire le champ libre.
0: इस क्लिप में जो लोग हैं वो शायद दिखाना चाहते हैं कि वे मनमर्जी कर सकते हैं, आंगन में, कैदखाने में जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, यही दिखाना चाहते हैं। सिगरेट का व्यापार होता है, जानते हैं, एक सिगरेट का दाम 1,000 रुपये में बेच रहे हैं। एक सवाल बना हुआ है, किस तरह ऐसी स्थिति पेश आई बिना किसी तत्काल हस्तक्षेप की। सभी कैदखानों में CCTV कैमरा है, 24 घंटे 7 दिन, कुल 1,500 कैमरे हैं। इस क्लिप में देखेंगे तो पाएंगे कि वे अलग स्थान में गए जहां CCTV कैमरा नहीं है, टॉयलेट के पास। तलाशी और कंट्रोल के बावजूद तंबाकू का गैरकानूनी व्यापार जारी है कैदखानों में, जिनमें बुबासें भी शामिल हैं। इससे एक सप्ताह पहले ही एक गार्ड के साथ पूछताछ की गई थी। जब पुलिस कर्मी का मोबाइल देखा गया तो पाया गया कि जूस के जरिए उसे 40,000 रुपये मिले हैं एक ही के लिए, और कई बार ऐसा हुआ है कई सिगरेट्स के लिए। बुबासन जेल में अभी कोई 953 कैदी हैं, 40 से अधिक कैदखाने एजेंट अलग अलग सेवाओं में संलग्न, अर्थात 25 कैदियों के लिए एक गार्ड। बहुत जल्द भर्ती किए गए 58 कर्मचारी सभी कैदखानों में कार्यरत होंगे ताकि कैदियों पर ज्यादा नियंत्रण हो।
2: मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव के बावजूद पेट्रोलियम निर्यातक देश में संगठन ओपेप ने वैश्विक तेल बाजार की संभावनाओं को लेकर अधिक सतर्क रुख अपनाया है। संगठन ने लगातार तीसरे महीने 2026 के लिए वैश्विक तेल मांग वृद्धि के अपने अनुमान को घटा दिया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ने एक बार फिर से 2026 के लिए पेट्रोल की वैश्विक मांग की वृद्धि को कम ही आंका है। अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में ओपेक ने दैनिक तौर पर 7,80,000 पीपे की वृद्धि का अनुमान लगाया, जबकि इससे पहले 9,70,000 का अनुमान था। लगातार तीसरी बार कमी नोट की जा रही है। कारण यही मध्य पूर्व में निरंतर तनाव के परिणाम, खासकर स्ट्रेट ऑफ ओर्मुज जल मार्ग के आसपास और साथ में दुनिया के कई देशों में भी आर्थिक वृद्धि में धीमापन नोट किया जा रहा है। इसके अलावा ओपेक ने वैश्विक मांग के दो प्रमुख इंजन यानी चीन और भारत की उपभोक्ता के लिए भी कमी का पूर्वानुमान किया है। इस परिप्रेक्ष्य के बावजूद संगठन ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने साल के पहले 3 महीनों के लिए मजबूती का सबूत दिया है, और कि अगर जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है और ऊर्जा मंडियां स्थिर होती है तो सुधार की संभावना है। पेट्रोल की वैश्विक मांग में बढ़ोतरी के पूर्वानुमान को लेकर 2027 के लिए अधिक आशावादी है। मंडियों में नजदीकी से इस पर नजर है, क्योंकि कई देशों के तेल के दाम और बाद में ईंधन के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस ने वैश्विक आवास संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। मंत्री शकील मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया, जहां न्यू अर्बन एजेंडा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आंकलन किया गया। शकील मोहम्मद ने आवास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: अपने संबोधन में मॉरिशस ने कहा है कि क्वीटो में न्यू अर्बन एजेंडा को अपनाए जाने के 10 वर्ष बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग झुग्गी बस्तियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहने को मजबूर हैं, जबकि लगभग 3 बिलियन लोगों के पास अब भी पर्याप्त और सुरक्षित आवास उपलब्ध नहीं है। मॉरिशस ने यह भी दोहराया है कि सम्मानजनक आवास का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिनमें संघर्ष और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित आबादी भी शामिल है। छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए न्यू अर्बन एजेंडा केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं, बल्कि अस्तित्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकल्प है।
4: मॉरिशस
3: अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता है, साथ ही विस्थापित प्रत्येक परिवार के उस अधिकार का भी समर्थन करता है जिसके तहत वे अपने घर लौट सकें, अपना आशियाना फिर से बसा सके और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। इसी सोच के साथ मॉरिशस ने इंतजार नहीं किया, हमने अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीति को लागू किया जो एक बाध्यकारी क्षेत्रीय दृष्टि पर आधारित है। ये हमारी तटीय सीमाओं की

की रक्षा करती है और आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच झूठे विकल्प को स्वीकार नहीं करती। हमने आवास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, क्योंकि जिस परिवार के सिर पर छत नहीं होती उसका सम्मान भी छीन जाता है और जिस राष्ट्र का सम्मान नहीं बचता उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। एक छोटे द्वीपीय राष्ट्र के लिए लचीलापन

0: 1920 से न्यूयॉर्क तक संघर्ष से तबाह शहरों से लेकर समुद्र के बढ़ते जलस्तर से खतरे में पड़े तटीय इलाकों तक लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहाँ रह सकता हूँ और अपना जीवन फिर से कहाँ बसा सकता हूँ। हम सब की ओर से उन्हें केवल एक ही जवाब मिलना चाहिए, एक सुरक्षित घर। मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तीन प्रमुख अपीलें की हैं। पहली, स्पष्ट समय सीमा के साथ ठोस और प्रभावी प्रतिबद्धताएं अपनाई जाएं। दूसरी, छोटी द्वीपीय विकासशील देशों के लिए जलवायु और शहरी विकास से जुड़े वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाए। और तीसरी, ये स्वीकार किया जाए कि आवास का संकट अब केवल कुछ देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ी एक साझा चुनौती बन चुका है।
1: मॉरिशस में कई लोग भोजपुरी भाषा बोलते और समझते हैं। नई पीढ़ी हमारे पूर्वजों द्वारा लाई गई इस भाषा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज भोजपुरी भाषा में आयोजित कविता पठन प्रतियोगिता और कहानी सुनाने की प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में इस अवसर पर एक विशेष समारोह लगा।
0: ये बच्चे भोजपुरी भाषा के राजदूत हैं। अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इन्होंने ये साबित किया है कि मॉरिशस में इस भाषा का महत्व आज भी बरकरार है। उनके लिए भोजपुरी में कविता पाठ करना केवल एक स्कूली गतिविधि नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से सीधा जुड़ाव है। भोजपुरी को भाषा की तरह बोलना चाहिए ताकि हम इसे बोल सकेंगे। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी जहां मुझे समझ आया कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, मातृभाषा बोलना चाहिए। भोजपुरी मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पूर्वज ये भाषा बोलते थे और अब हम लोग बोल रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं अन्य भाषाओं के साथ साथ भोजपुरी भी बोल सकती हूँ जहाँ अन्यों की तुलना में बच्चे नहीं बोल पाते। मैं हिंदी और भोजपुरी दोनों में बात और कार्य कर सकती हूँ। ऐसे समय में जब भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये प्रतियोगिता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। बच्चों के लिए आयोजित इस पहले संस्करण में कई वयस्कों ने भी इसमें भाग लेने की इच्छा जताई है, जो इस पहल के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है।
2: कोनो भाषा के जब लेख उकरा प्राचिक मैंने दलब ओकर में बोल चाल नहीं हुई तो कले कले वो भाषा समाप्त हुए ले चल जाला। तो वो भाषा के बचाए खातिन भोजपुरी के मॉरिशस में बोले के प्रोत्साहित करे खातिन हमनी है प्रतियोगितावा के आयोजन कर ले रही जा। एक में दूगो श्रेणी रहल, एगो कविता पाठन और ये एगो खिस्सा कहानी सुनाए के। तो हमनी एकर में हयो चाहली सा कि भोजपुरी बड़ा आदमी लोग तो बोलबे करेला लेकिन एकर में लैका लोग भोजपुरी बताए वही खातिन है ये प्रतियोगिता। हमने खास करके बैठका के लैका लोग खातिन रखले रही जा और ये बहुत खुशी की बात बा कि 5 बरिस से लेके 10-15 बरिस ले एकर में नौजवान लोग बड़ा आदमी लोग भी 26-27 बरिस के लोग भी एकर में भाग ले लन सा।
0: इस प्रतियोगिता के माध्यम से मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे भोजपुरी भाषा के संरक्षण और उसके महत्व को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है।
1: और कल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले रविवार की सुबह 1 बजे तीसरे स्थान के लिए मैच होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। मायामी के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद कल रात 11 बजे वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनल होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। इसका प्रसारण MBC 11 और MBC Play पर किया जाएगा। और विदेश की खबरों में, कनाडा और अमेरिका के मिनेसोटा जंगलों की आग का धुआं पूर्व और दक्षिण की ओर फैल रहा है। इससे शिकागो, मिडवेस्ट, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क तक हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसी जगहों पर जहां पर वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेडियम पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
3: कनाडा और अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के जंगलों में लगी आग का धुआं पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, जिससे शिकागो और मिडवेस्ट से

0: कर फिलाडेल्फिया और पूर्व में न्यूयॉर्क शहर तक खतरनाक स्थितियां पैदा हुई।
1: देश के उत्तर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। कल सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी। बाद में देश के पश्चिम में रह रहकर बरसात हो सकती है। दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम सहली इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:47 पर, सूर्योदय कल सवेरे 7:45 बजे।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग टेक्निकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मुसलमान दिलिस विलनुआ मेबर्ग में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल मुनाफ स्कायली शेख अली जनाब अब्दुल मुनाफ शेख अली जो बाई मुनाफ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा कल दिन के 11:30 उनके मकान मोसल मौदेलिस विलनुआ मेबर्ग से उठाकर सबसे पहले नमाज़ जनाजे के लिए विलनुआ की रहमान मस्जिद और फिर दफनाने के लिए पॉइंट भोक उसकी व्यादि खयाल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमारो एट 11:30 AM। काशीनाथ रोड पर स्टूड फ्लैक में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री किशन बलरूप जो किशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनकी पत्नी बलरूप किरण काजल के मकान काशीनाथ रोड पर स्टूड फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। रेलवे रोड का चिमलितिया में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री विक्रम सिंह रामदिकुल जो रोशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:00 उनके मकान रेलवे रोड का चिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेदिन कौंदमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Radio, 24 hours a day.

सीबी की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए. सीबी की तरफ से एक विज्ञप्ति. Hermitage, Mont-Salmon Dumas, Mont-Salmon Fariden, Bellerive Road, Anouar-e-Kouba Road, Terre Rouge Road, Hermitage और Saint-Campan Road के आसपास के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. Plainvert, rue Canal Bathurst, Caracal, Turtle, Aïe Doré और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. Highlands, Mont-Salmon Omniken और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए. काट्रोबोन और आसपास के रहने वालों को रॉयल रोड, बेल रोज, ड्यूकेन और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई को ही सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. एवेन्यू विल्सन, बू सेजू, कुलविल, दे ला फाई, पुआव, ला पेरूस और आसपास के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 8 बजे और के बीच और दोपहर के 3 बजे के बीच में मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. सैपिया के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. पिची वेजे, बुआशेरी रोड, रिविया बापचिस, ले पुस रोड, स्कूल लेन, सैपिया विलाज, एग्लीज सैं पियर और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच. बोबासा के रहने वालों को और आसपास के रहने वालों को एवेन्यू डॉक्टर लेजियर, एवेन्यू कोदाबाकस, एवेन्यू राहुल फिलिप, एवेन्यू मोदाव, रेजिडेंस विलमे, NHDC Vilme, Dr. Reed, Avenue Mahadeo Biltou, Avenue Dupère, Avenue Châteauneuf, Châteauneuf, और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 19 जुलाई 2026 को सुबह के 5:15 से लेकर रात्रि के 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे या फिर दोपहर के 2:45 से लेकर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. ड्रीम प्राइस बुबासें और आसपास के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि 8:15 से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. बिना सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी. इस असुविधा के लिए सीबी क्षमा प्रार्थी हैं.

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: नाडेस रोड हाइलैंड्स फिनिक्स के हाइलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर द्वारा रविवार 19 जुलाई को सुबह 8:30 बजे यज्ञ का आयोजन किया गया है। लाफलोगा के श्री सूर्य मंदिर पुरुषोत्तमा

0: क्षेत्र द्वारा रात यात्रा निकाली जाएगी। स्थान है रविवार 19 जुलाई सुबह 9 बजे से रात के 7:30 बजे तक श्री गयानाथ मंदिर बोनाकई, श्री शिव मंदिर लालमाची, श्री गजाधर मंदिर कैथ।
1: किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
2: कंटिन्यूअस
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, साउंड्स और आवाज के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वीकार कीजिए और जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। शाम के 6:25 हो रहे हैं। वेलकम टू आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन। अभी से लेकर रात के 7 बजे तक भाव गीतों पर आधारित प्रोग्राम नई सोच। रोता हुआ इंसान आता है और रोता हुआ जाता है। क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा, कुछ भी तो लेकर नहीं आया है। ये शरीर उसका अपना नहीं, ये आत्मा उसकी नहीं, फिर किस बात का इतना गुरूर है, इतना घमंड है। रोता हुआ रोते हुए सभी लोग आते हैं और एक दिन रोते हुए सभी लोग इस दुनिया को छोड़ कर चले जाएंगे। जब कोई जाता है संसार को छोड़ कर तो सभी लोग रोते हैं, पर जब संसार में कोई आता है तो सभी लोग हंसते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। यही विडम्बना है, क्यों? जब किसी का जन्म होता है तो हम उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पर जब वही व्यक्ति संसार को छोड़ जाता है तो हम रोते हैं, विलाप करते हैं।

दोस्तों, इस दुनिया में अकेले जीना बहुत मुश्किल है, तन्हा जीना बहुत मुश्किल है। किसी ना किसी का साथ चाहिए, कोई दोस्त, कोई हमसफर या कोई बेस्ट फ्रेंड, किसी ना किसी का तो साथ चाहिए। वरना जब इंसान अकेला होता है तो डिप्रेशन में पड़ जाता है और उसका जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि संसार में अकेला नहीं जिया जा सकता, हमें किसी ना किसी का तो साथ चाहिए।

इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी मां के पेट से बुरा बनकर नहीं आता है। अगर इंसान बुरा बनता है तो हालात के कारण, परिस्थितियों के कारण, कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि इंसान को बुरा बना देता है। परंतु कोई भी इंसान संसार में बुरा बनकर पैदा कभी नहीं होता।

ये कलयुग है दोस्तों, यहां पर सब कुछ नकली है। सुख ढूंढ रहे हैं आप यहां पर तो दुख ही दुख है। और हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख रहता है, और जब दुख आता है तो हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रभु से सहायता चाहते हैं। संसार एक नदी के समान है जहाँ पर सुख दुख दो किनारे होते हैं, और इन दोनों का सामना करते हुए इंसान को आगे बढ़ना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इंसान को हर हाल में जीना ही पड़ता है।

जी हाँ, नई सोच कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। रात के 7 बजे है। नमस्कार आदाब, वेलकम टू ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द रेडियो लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। आज शनिवार 18 जुलाई 2026, दिलों की आवाज, जी हाँ, हॉट पेपी सॉन्ग्स पॉस म्यूजिक पर ठहरा अभी से लेकर रात के 9 बजे तक, डिस्को टाइप गाने। और बेशक फोन करना चाहते तो फोन कीजिए 4028070 पर फोन कर सकते हैं। द फर्स्ट गाना मीट मी डेरी बेबी, जी हाँ, फिल्म वेलकम का गाना है। और ये गीत हम चलाएंगे खासम खास संगीता मीरन के नाम, फेलागोजा से, टू ऑल अमीरन एंड मोहन फैमिली। तो चलिए एक साथ सुनते हैं ये गाना मीट मी डेरी बेबी। और यही गीत प्रताप की ओर से उनके बेस्ट फ्रेंड हरीश नारायण के नाम, आप रहते हैं मिडलैंड्स। और प्रताप की ओर से उनके दोस्त, उनके और एक बेस्ट फ्रेंड है नतराज

It's Saturday night, it's party time on Orin Pre Radio Manoranjan 94.95.62.2 MHz. अगला गाना ओ दुश्मना फ्रॉम द मूवी एक और एक ग्यारह आपके फोन कॉल्स यस और अगला गाना बहुत ही प्यारा सा गीत है ये गीत आप सुनेंगे सौम्या राव

0: सुदेश फॉर लिसनिंग टू अस और यही गाना जाएगा राज मन्ना के लिए राजा स्टीव चिबुग लोंग प्रवीण भैरव श्याम मंगल जिमी और सावन दुखिया विकास नारायण और यही गीत रीता की ओर से उनकी दो बहनें हैं रेणुका और अमृता ये गाना साइलेंट की ओर से उनकी नेफ्यू माधव के नाम और माधव अपने चाचा साइलेंट से बहुत प्यार करते अपने चाचा को चाचा जान बुलाते हैं क्या प्यार है क्या मोहब्बत है चाचा भतीजा का रिश्ता यूं ही कायम रहे और आशा जानू कहते से हाय आशा दिस गाना फॉर यू मामा कुमारी शुभम और दीदी आरती और सभी परिवार जानू परिवार के नाम रेहाना हुसैन अली आप है फिनिक्स से बैन साइदा जरीरा कोहैसा और सभी हसनानी परिवार के नाम ओ दुश्मना और अभी एक लाइन पे एक दोस्त है अनिता जी फ्री कॉन्फ्लैक्स से लेट्स लिसन टू हर हेलो अनिता जी नमस्कार
1: नमस्कार प्रताप जी
0: कैसे हैं आप
1: हम ठीक है और आप कैसे हो
0: आपने पुकारा और हम चले आए
1: थैंक यू भाई
0: कैसे हैं सब ठीक है ना
1: ठीक है और आपकी यहाँ सब ठीक है ना
0: सब कुशल मंगल यहाँ पर हम आपका मनोरंजन कर रहे हैं
1: हाँ बहुत पसंद सभी प्रोग्राम हमें बहुत पसंद हो
0: बहुत खूब और अगला गीत किसके लिए
1: खूब बारिश हुई थी कल
0: आपके यहाँ खूब बारिश हुई
1: आज नहीं कल थी
0: कल बारिश थी अभी मौसम अभी कैसा है
1: अभी थोड़ी सी ठंडी है
0: पर आसमान में कुछ सितारे जगमगा रहे हैं क्या बात है चांद भी नजर आ रहा है चांद नजर आ रहा है नहीं
1: हाँ चांद है
0: हाँ क्या बात है
1: अभी पूर्णिमा नहीं हुई है ना
0: हाँ
1: अभी पूर्णिमा नहीं है न्यूवेल दिन है
0: हाँ सो अनिता बोलिए अगला गीत किसके लिए
1: फिर बादल का गीत चला दीजिए हमारे लिए
0: आज चल रहा है सब डिस्को गाने क्या बादल गाना डिस्को गीत है आज सब डिस्को गीत चलेगा हाँ ये भी है हमारे पास
1: हमारे लिए चला
0: ओके और ये गीत किसके लिए आप चला रहे हैं
1: सभी फ्रेंड एंड फैमिली के लिए
0: और आज का दिन कैसा रहा नीता जी
1: ठीक हुई
0: घड़ी पर थे कहीं घूमने
1: पर थी हूँ नहीं गई कहीं नहीं गई तो बहू गई है अपने चाचा की बर्थडे है आज और छोटी बहू गई है एक शादी में साफ़ में हल्दी में
0: ओके
1: थोड़ी सी पकवान हुई उसके लिए हमने भेजी
0: हमने
1: पकाई
0: अच्छी बात है शेयरिंग इज केयरिंग ना जब हम शेयर करते हैं
1: हमारी बेटी है ना बहू है
0: हाँ ये तो है ये तो
1: जब तक हमारी हाथ पांव चलती है तो हम
0: कुछ ना कुछ तो तैयार करते हैं ना
1: तैयार करके हम भेजते हैं बहुत अच्छी लगी
0: जरूर जरूर बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया
1: ओके थैंक यू
0: ओके बाय बाय ठीक है और चलिए सुनते हैं गाना ओ दुश्मन यही प्यारा सा गीत आप सभी म्यूजिक लवर्स के नाम जो मैं सुन रहा हूँ और एम3 रेडियो मनोरंजन पर खासम खास हरीश नारायण के नाम और हरीश नारायण बड़े झूम रहे नाच रहे और नटराज रामकुरन उनका बर्थडे है 25 जुलाई को हैप्पी बर्थडे दोस्त इन एडवांस ढेर सारा प्यार आपके पापा आपके मामा आपकी बहन आपके भाई और आपके दोस्त बेस्ट फ्रेंड प्रताप की ओर से नटराज रामकुरन ओ दुश्मना हियर वी गो इट्स टाइम टू डांस इट्स पार्टी टाइम ऑन रेडियो मनोरंजन

एक से एक बेहतरीन और लाजवाब गाने सैटरडे नाइट को एकदम ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और सभी लोग पार्टी के मूड में हैं तो हम भी पार्टी करते हैं। सर्द मौसम, सर्दी का मौसम, ठंडी हवाएं बह रही है और इसमें हो जाए कुछ डिस्को टाइप गाने। आई एम अ डिस्को डांसर, अनीता जी की पसंद का ये गाना है, फ्लिक ऑन फ्लैक्स से। जी हाँ।

ये गाना हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम, संजय बिहारी, उनकी पत्नी सुरेखा, बेटा कुशल, बहू, बेटी रिंकू, दामाद, और ये गीत निश्चल शिवरतन, सब शिवरतन परिवार के सत्यम। सुनिए गीत आपके नाम भी। सैंटोबर SSS कॉलेज के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट्स और एक्टर के नाम मिस्टर साजू, मिस्टर अपाया, मिस दीना, मिस प्रतिमा, मिस बानू। ये गीत मिस्टर वीरापन और मिस्टर रोसाई के नाम। एंड हैप्पी स्कूल हॉलीडेज टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जी हाँ, एक महीने तक आप घर पर रहेंगे, आराम फरमाएंगे, स्कूल की छुट्टियों का भरपूर मजा लीजिए। सुनिए गाना, आई एम अ डिस्को डांसर, ना ना ना ना। यस, गीत मांगने का नंबर 4028070।

That was Disco Dancer. जी हाँ, एक महीने से वर्ल्ड कप फीफा 2026 का आयोजन किया गया और एमबीसी टीवी पर आप सभी मैच देख रहे हैं. वाओ, दैट्स रियली नाइस. सो इसका अंत होगा 19 जुलाई यानी कि कल. ऑलराइट, रविवार को इसका फाइनल होगा और यह मैच होगा न्यूयॉर्क न्यूजीलैंड स्टेडियम अमेरिका में. ऑलराइट, और प्रतियोगिता है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026. फाइनल की तारीख रविवार 19 जुलाई 2026. स्थान होगा न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका में. मेजबान देश होगा अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको. भाग लेने वाली टीमें होंगी पहली बार 48 टीमें विश्व कप में हिस्सा ले रही है और 104 मैच खेले जा चुके हैं या खेले जाएंगे पूरी तरह से कल. एंड बेशक लेट्स सी किस देश की जीत होती है, वही जीतेगा जो सबसे बलवान होगा. राइट, सो आप में से बहुत से लोग क्रेजी है इस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में. सो कोई कह रहा है कि ये देश इस देश की जीत होगी या उस देश की जीत होगी. हम तो कहेंगे उसी देश की जीत होगी जो देश सबसे अच्छा खेलेगा. राइट, सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस एंड वेट फॉर द फाइनल टुमारो. कल तो होगा हंगामा धमाका और रेडियो एमबीसी रेडियो के सभी चैनलों पर समय समय पर स्पेशल प्लाटो होगा, टीवी पर भी, स्पोर्ट्स चैनल पर भी, ताकि आप लोग जान सके कि यह वर्ल्ड कप फीफा 2026 किसके हाथ जाएगा, किस देश

0: को मिलेगा दिस फाइनल वर्ल्ड कप 2026। अगला गाना मेरे चांदे तू सोना तू, बहुत ही प्यारा सा गाना। ये गीत हम चला रहे साइलेंट किरोसिन की पत्नी रानी, प्यारी सी बेटी है परी एंड सास्ती बनमाली। ये गीत आपके पूरे परिवार के नाम। हाय मुकेश गंगा, ये गाना आपके नाम, आपकी पत्नी और बच्चों के नाम। भाई आबू बकवास है, कैसे है? सलाम भाई, सलाम वालेकुम भाई आबू। यह गीत आपके नाम, आपके परिवार के लिए। राफिक मोहित तयाक से है, इब्राहिम पोट्री से, रोजिडा फ्रॉम हाईलैंड से, मैं सबीन फ्रॉम प्लानवेट, मेविन की ओर से जानवी के नाम, एंड मेविन सेज दैट ही लव्स जानवी, और वो जानवी से बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है, जानवी रहती है बनते। सो चलिए सुनते ये प्यारा सा गाना, टू ऑल द लवर्स एंड म्यूजिक लवर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। और बेशक मनोरंजन का नंबर पता है ना आपको, 4 0 0 7 0 फोन कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू लिसन टू अस ऑनलाइन, इट वुड बी ऑन बाय लॉगिंग दिस फॉलोइंग वेबसाइट www.mbcradio.tv और क्लिक करें लिसन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। डॉक्टर राकेश रामचरण प्लान मायों से, उनकी पत्नी, फिर उनके दो बेटे और सब रामचरण परिवार के नाम। शालिनी हीरू फ्रॉम लाफलोगा, उनके पति विशाल, दो बेटियां, उनके भाई कृष्णा और सब हीरू परिवार के नाम। दिस गाना मेरी चांदी तू मेरे सोना तू।
1: Let's spend the night together. I just wanna feel you next

लोग आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे बॉयज एंड बर्थडे गर्ल्स, हैप्पी बर्थडे। कल विशाल हीरू ने अपना जन्मदिन मनाया, आपने तेल आप लोग आसो बधाई और प्यार आपकी पत्नी, आपकी दो बेटियां और आपके पूरे हीरू परिवार की ओर से। विशाल हीरू, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू फ्रॉम योर फ्रेंड प्रताप एज वेल, प्रताप की पत्नी रानी, बेटी परी की ओर से भी, फ्रॉम ऑल सिटालवन हीरू परिवार। विशाल हीरू, गॉड ब्लेस यू मेरा यार, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, भगवान करे आपकी जोड़ी में प्यार ही प्यार हो, बाहर ही बाहर हो। फो द वन एंड ओनली विशाल हीरू, जी हाँ, ढेर सारा प्यार आपको। एंड द नेक्स्ट गाना अदनान सामी की आवाज़, किस मी बेबी, क्या गाना, फ्रॉम द मूवी गरम मसाला। फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, ये गीत आपके नाम especially Shahana, hi Shahana, Dr. Anju bhi hamara saath hai, hello Dr. Anju, this gana for your fiance, ye geet Sangeeta ke naam Cupid se hai, ye geet Sarla ji hai aapke liye, Canada se hai Deepa Tiwari Dukhet, unke pati Kevin, unke bete aur Rambha hai Switzerland se, Italy se hai Vishal Mandab aur uski patni hai beti, aur ye gana hum chalayenge Australia ke Ajay aur Poonam Chintaram ke naam, उनके बेटे बाल गोपाल और मॉरिशस में माता जी इंदिरा चिंताराम के लिए, उनके बेटा चंदन, बहू प्रिया, बेटी सलोनी, दामाद और सब चिंताराम परिवार के नाम। लेट्स गो विद द नेक्स्ट ट्रैक।

0: हमें तो पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था।
1: मुझे भी तो तुम दोनों से पहली नजर में प्यार हो गया था। I said, what gorgeous sexy men. साथ में गुंडे मगर ख्वाब बड़े बड़े।
2: कयामत कयामत कयामत।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Yes, one day RJ banne ke liye ho jaye to ya deadline 26th of July. Yes, you want to be an RJ? Ek din ke liye RJ ban sakte hain. To phatafat ek video banaiye aur bheje on the following. Abhi jo detail diye gaye Vikash aur Vidya ke saath. All right. Raat ke 7:50. Hello, G. Kahiye dosto. How are you doing? Hope you're doing well. I'm doing great. Great to be with you on this lovely and Saturday. On this lovely Saturday night. 18 July 2026. Aur agla, yes, and now let's listen to the programs. Kal kaun kaun se program rakhe gaye hai hamare MBC TV par, chaliye unka jhalka sunte hain.
3: MBC TV, rangeen programon ka khazana.
4: Humne tujhe bahut bharosa kiya. 20 din ke liye humne tere luck par invest kiya. Aaj tujh par bahut paise lage hue hain aur tu jana chahta hai.
5: Main jana chahta hu.
6: अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? तुझे यह लाया कौन? तेरा लक। और तुझे भेजेगा कौन? तेरा लक। अब तुझे तेरे लक से ही तेरे पासपोर्ट को जीतना होगा।

0: रविवार 19 जुलाई को NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म लक, 2009 की मूवी हिंदी फीचर फिल्म लक। NBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: मैं किसी और आदमी के साथ कुछ नहीं करने वाला, सैम को पहले ही कह चुका हूँ, अब तुम भी सुन लो।
2: कुणाल प्लीज डोंट डू दिस मी राइट नाउ। मेरा बॉस कभी भी आता होगा, सैम ने मुझे प्रॉमिस किया था।
1: मैंने प्रॉमिस नहीं किया था ना,
2: तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। जब एम यहाँ आएगा यू हैड बेटर बी रेडी।
0: रविवार 19 जुलाई को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दोस्ताना, रोमांटिक कॉमेडी मूवी जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन पर फिल्माई गई दोस्ताना।
3: Continuous music. RM3.
4: Yes, well, best of the best music, very best of Indian songs, very best of Indian music right here. Hot peppy songs, fast music with Hala. Lela Melela, Pony Panty Kalyanji Ananji Ram Sampat Kyawas. From the movie Rais, बहुत ही जोशीला तराना है ना? पार्टी के मूड में है तो हो जाएगी गीत आपके नाम भी। ज्ञान और चित्रा विश्राम फ्रॉम मॉडल बे। कमला दिनू मोतावासन की प्यारी सी बिटिया है आरोही। हरिलाल दिनू, ये गीत आपके नाम, आपकी पत्नी, आपके बेटे, बहू, सब दिनू परिवार के नाम। चाची ललिता कुशल है त्रियोले से, चाचा आत्माराम, चाची प्रभावती लोल फ्रॉम नोवेल फ्रांस, ककतिया परिवार त्रियोले से, महाराणा प्रताप लिंत होबिश के सब हरकु परिवार के नाम और सब जिराखंड परिवार ऑफ त्रियोले हमारा साथ दे रहे हैं। और जहाँ सभी लोग हमें सुन रहे हैं, घर पे है, घर से बाहर है, गाड़ी में है, बस में है, जहाँ कहीं भी है, हमारी आवाज़ आपके कानों तक गूंज रही है। सही गीत आपके नाम लैला मलैला। ये कम कम क्या है? लैला में लैला समझता हूँ फिल्म गीत के बोल, ये खुमची कम कम, खुमची कम कम क्या है? Pictures on the beautiful Sunny Leone and Shah Rukh Khan, King Khan of Bollywood, Laila Me Laila.

रात्रि के 8 बजने में केवल 3 मिनट बाकी है और प्रोग्राम चले दिलों की आवाज आओ जी प्रताप सिंह के साथ रात के 9 बजे तक. दिस इज ऑल इन फ्री रेडियो मनोरंजन 94.5 और 96.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. अगला गीत जस्ट चिल चिल जस्ट चिल. ये गाना रवि दिनू की ओर से उनकी पत्नी उनके बच्चे साथ में उनके माता पिता और सब दिनू परिवार के नाम एमजॉय कॉलेज मोका के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम भी गीत जाएगा और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के बीए फ्रेंच एमए फ्रेंच और पीएचडी फ्रेंच में एनरोल स्टूडेंट्स और वहाँ के प्रोफेसर और माफ कीजिए लेक्चरर दोस्तों के नाम और जितने भी लोग इस समय भोजन कर रहे हैं बोन अपेटी सुरुचि और हो जाए ये प्यारा सा गाना जस्ट चिल चिल जस्ट चिल. ये गाना आप सुनेंगे सुनो निगम जयेश गांधी और अमृता कक की आवाज़ों में.

0: Just chill.
1: RM Free Radio. Radio. Radio. दिलों की आवाज की आवाज की आवाज जहां दिलों की आवाज कार्यक्रम चल रहे हैं आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर एमबीसी रेडियो मनोरंजन ऑन 94.95 और 698.2 FM पर जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन गाइस एंड गर्ल्स डी ऑडियंस दिस इज योर मस्ट इवनिंग शो दिलों की आवाज़ जहाँ पर हम चलाते हैं धमाकेदार जोशीली तराने सैटरडे नाइट फीवर यस रात के 8:04 हो जाए एक लवली से तराना फ्रॉम द मूवी कुर्बानी पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल सिना तमान एंड फरदीन खान के बाबा फिरोज खान पर आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए यस अगर कोई आप जैसा आ जाए जिंदगी में तो क्या बात है यस और ये गीत कुणाल हिरीलाल के नाम फॉर योर फैमिली पूर्णिमा फकीराय गीत आपके नाम भी हम चला रहे हैं बहुत बहुत प्यार के साथ कुणाल

हरिलाल संजय हरिचंद फॉर योर पत्नी संध्या बेटी विश्वकर सब हरिचंद परिवार के लिए टीना बुड्ढा उनके पति रोशन आप रहते हैं वेल और ये गाना सभी लवर्स के नाम सभी म्यूजिक लवर्स के नाम सभी यंगस्टर्स के नाम जो हमारे साथ जुड़े और सभी लोग जो इस समय हमें सुन रहे हैं और आप लोग झूम रहे हैं गा रहे हैं अगर सफ़र में हैं तो आपका सफ़र सुहाना हो कहीं जा रहे हैं कहीं लौट रहे हैं और ड्राइवर दोस्त जो है ड्राइव कर रहे सो ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली और गीतों का मज़ा लेते रहिए जितने पैसेंजर है भी गाड़ी में या बस में हमें सुन रहे हैं सो दिस गाना फॉर यू आप जैसा कोई फ्रॉम द मूवी कुर्बानी चलिए साथ साथ गाते हैं ओके लेट्स सिंग टुगेदर टुनाइट

Saturday Night Fever, चलिए झूमते हैं, गाते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं. Let's dance, it's party time on MBC Radio Manoranjan. अगला गीत विवेक के नाम, for his best friend Shreya.

0: पेंट करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC Radio presents One Day RJ
0: Open to all Mauritians। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: Continuous music.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को

कॉमेडी से भरपूर मूवी वेलकम टू द जंगल पिक्चराइजिंग अक्षय कुमार परेश रावल छोटा डॉन एंड सोमो एंड मेनी मोर अदर आर्टिस्ट एक साथ हंसी से भरपूर फिल्म जरूर देखिएगा वेलकम टू द जंगल अभी के लिए हो जाएगी आपके नाम घिस घिस घिस कैसे नहाया जाता है साबुन से भोजपुरी सॉन्ग इन ए बॉलीवुड मूवी ये गीत सभी रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम

रात के 8:50 हो रही है आप जुड़े हुए और इम्प्रूव रेडियो मनोरंजन के साथ और 94.5 MHz दिलों की आवाज दिलों की आवाज जारी है रात के 9 बजे तक अगला गाना जानलेवा फ्रॉम द मूवी मोक्षा ये गाना चलेगा सोनिया परेसनिस के नाम और विशाल मंडप इटली से है सब मंडप परिवार के लिए जो मोहताबाद से हमें सुन रहे हैं रवि चपोस के उदय धनी राम जी है हेलो जी ये गीत आपके नाम आपकी पत्नी बेटे बहू बेटी दामाद और सब परिवार के नाम और कोरक जी का जन्मदिन है 4 साल के हो रहे हैं सो बधाई और प्यार आपको आपके पूरे परिवार की ओर से नारानी दादा दी एंड ऑल कोरक फैमिली एंड धनीराम फैमिली बच्चन परिवार बचपन से हमारे साथ जुड़े हुए थैंक यू जी प्रीतम राज जी मिलाई गीत आपके नाम भी जाएगा एंड ऑल जिमिना जिमिना परिवार बहुत प्यार से सुन रही है विक्रम नी फोर दिस गाना फॉर यू फॉर योर मामा एंड पापा एंड ऑल निरंजन फैमिली सब बनमाली परिवार के बचपन से है कौन मॉडल के सब परिवार के नाम यह प्यार सा गीत जाएगा और यही गाना हम चलाएंगे फातिमा जी के नाम न्यू ग्रोव से है हाय फातिमा ये गीत आपके नाम बहुत बहुत प्यार के साथ जैनब फिनिक्स से हेलो जैनब कैसे हैं आप सलाम अलैकुम ये अगला गीत आपके नाम जानलेवा फॉर समवन स्पेशल और उन लोगों के नाम जो बीमार है या अस्पताल में है क्लिनिक में है अनाथ आश्रम में है तो बस हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप लोग जल्द ठीक हो जाएं दिस गाना स्पेशली फॉर यू जानलेवा

It's time to say goodbye. जी हाँ, बीना मिस्त्री की आवाज़ में हॉट हॉट हॉट और इसके बाद हम आपको छुड़ेंगे तमातमा लोगे बापी लहरी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी थानेदार अनुराधा पोडवाल बापी लहरी की आवाज़ों में वो गीत लेकर जाएगा 9 बजे ठीक 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी जल का प्रोग्राम रत्ना पदारत के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस एंड रेडियो मनोरंजन शाम के 5 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करम मेहरबानी आपके SMS आपके फ़ोन कॉल्स और टिकटॉक पर हमें देखने के लिए शुक्रिया दैट वाज रियली सुपर्ब टू बी विद यू दिस इवनिंग एंड टुनाइट हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम कल संडे 19 जुलाई को शाम के 3 से 4 बजे ऑन रेडियो मनोरंजन इसी चैनल पर प्रोग्राम होगा ऐसा भी होता है टिल देन इज गुड बाय फ्रॉम मी और जय प्रताप सिंह से तालुक की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार लव यू ऑल गॉड ब्लेस बाय बाय टेक केयर सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन बाय बाय लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते

0: RJ.
1: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का

रात के 9:03 हो गए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप सबको के स्वागत बार रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आप सबको के साथ देवे खाती रत्ना साथ जुड़गल हवन तब साथ देते रहिए जा और लाजवाब मजेदार भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जो जे रोज रात के चले रहा 9 से लेके 11 ले 2 के हई लाजवाब मजेदार कार्यक्रम में आप सबको के स्वागत कर रहे और 402-808-85 पर तो हर फोन कॉल्स और मिसाज विदा करे खातिन 5251700 सेकंड दे सकते हैं पर तो हमने के कॉन्टैक्ट करे सकब बेसास विदा करे सकब और अपन पसंदीदा गीत के तुम मांग करे सकब और जे तोहर हियाँ बा कोनो जन्मदिन कोनो शादी के अवसर और कोई खातिर तू बहुत प्यार से एगो गीत डेडिकेट करे खोजत हवा जरूर हमनी के जनैया और लाजवाब आज के कार्यक्रम में रत्ना संगे रात के 11 ले बहुत बेहतरीन गीत के संगे साथ ही साथ बेहतरीन चुटकुला तोहर खातिर खोज के आनल है तो चला आज के कार्यक्रम शुरू करब जाएगो बहुत ही मजेदार धमाकेदार गीत के साथ किशोर खिमिया के आवाज में रखल आज के है पहला गीत hey!

है कि भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो शुरू हो गल बा और 9:10 बहुते लाजवाब बहुते मजेदार कार्यक्रम जहां पर तू हमनी के साथ देवेला और तोहर पसंदीदा गीत चलावे के हम हईजा से पूरा पूरा कोशिश करीला। तो चला हईजा पर पंडित राज वर्मा जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन पेचित काफ़े से और उनकर सब बड़ुआ परिवार खातिन चलाओ अब जा है बहुते बेहतरीन गीत जे।

अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल अमर 20 के पास बा बंतार करेला तो चला चचा के बंतार कराबो अब जा औरी संगे संगे हैजा पर घोंघोप से चार गो बहिन सुनीता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनकर बहिन कोंगोमा से विमला जी हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ देवेलन साथ ही साथ अमृता जी हवन घोंघोप से औरी वीना जी गुडलैंड बगल से हमनी के हमेशा सुनते रहेलन तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिर मजेदार चचा के जालोगवा का बोलब चचा कौन दिन चाची के का जनी कहाँ से दिमाग में कहाँ से चलावे बोले आज के बाद झगड़ा नहीं करी तो चाची के बोले जाने ल हम तोहर से आज अब के बाद कबो तोहरा झगड़ा करे के लेता नहीं देव अब तो चाची खीस में आके फेरों से गाल बजा के बोले हाँ हम तोहर लेता के आतान करब हमनी के नहीं चाहेला तोहर लेता वे तो हमनी के जब मन करी तोहर से झगड़ा करे के हम तो झगड़ा करते रह तोहर से ये खातिर तोहर से शादी कर ले हाँ। अब का बोला बेचारा चाचा जब खोजे लंस झगड़ा नहीं करेगे तो चाची तो कहाँ जाने कहाँ से इतना वजह ढूंढे लंस हाई झगड़ा करेगी

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चौचक कार्यक्रम और मजेदार गीत संगे है जहाँ पर ढेर कोई हमनी के टेलीफोने करत हवन बस अपन तार अपन तनी ले तो अतान करिया काहे के ढेर कोई हमनी के संगे खुशी रहे लन सब बतियाई के तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जाओ और मजेदार गीत के संगे है जहाँ पर अनिता लाल जी हमनी के साथ देवत हवन और ये व्हाट्सएप पे हाई मेसाज विदा कर ले बा इतु परिवार गोगा परिवार नागेश्वर परिवार और लाल जी परिवार जी मोह डाल से हमनी के हमेशा साथ देते रहे ला बहुत बहुत धन्यवाद और रोशन सदा सिंह के आवाज़ में रखल वंदना हमार सोना आई गीत के वो मांग कले हवन तो जरूर चलाओ अब जा और जैसे तू प्यार से सबको के बोले ना ता हमार सोना हमार बाबू भाई चचा तो का जनी कैसे कैसे बतवा बोल देवेला का जनी कब सुधरी हो कौन दिन से जाना था वह चाची से झगड़ा करके दो तीन दिन से बतियात बतियात नहीं बा चाची संगे तो चाची की तो अब रंज लगे लगल काहे के चचा तो तनको नहीं बतियाता था चचा के जाके बोले हाँ हम दो दिन से तोहर से नहीं बतियात हैं तो चचा बोले हाँ जानी ला तो बोला कुछ नहीं बोल बा तो चचा इतना भावुक हो गल चचा बोले हमनी के थैंक यू बोला का बोला चाची के थैंक यू बोला था

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में और देखा रोशन सदा सिंह कैसे वंदना के सुगा सोना सब बोले लंस और हमार चचा एगो कबो प्यार से नहीं बतियाला और कबो कबो चाची भी उतना प्यार से बतियाई के कबो लेता नहीं देवेला चचा के हमेशा झगड़ा करते रहे। चला आगे कार्यक्रम के बढ़ावा जा रहा है जा पर अनीता जी फ्लिकॉन फ्लाक से जुड़ गल हवन और ये अगला गीत जन है साजन के देवल साड़ी है जन सुनीता ननको गईले हवन है गीत के वो मांग करत हवन उनकर सब परिवार खातिन उनकर दोस्त खातिन और एमबीसी के टीम खातिन और जितना कोई रात के काम करत हवन जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन और है जा पर 9:25 हुआ था तो चला है गीत गीतवा चलाओ अब जा और चचा कौन दिन जैसे जैसे बैठ के गांव के सब आदमी संगे अपन गांव के हाई हाई जब देखा तब ज्ञान बांटते रहेला चचा कौन दिन बोले हाय दुनिया में कौनो बुड़बक प्रजाति है तो जाने ल कौन प्रजाति है तो मनोहर भैया बोले न भैया हम तो न जानीला बोले हाँ सबसे बुड़बक प्रजाति है मनुष्य इंसान लोग बोले वो कैसे भैया बोले हाँ तो देखा मनुष्य आदमी लोग बिजली बनैलक सच्चे बात है कि नहीं बोले हाँ है तो सच्चे बात है मनुष्य बनैलक बोले हाँ बिजली बना के अब बिल ही खुदे ही भरता बोला था तो बुड़बक नहीं बोलब तो कौन ची बोलब

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:30 हो गल बा और ही बहुत मजेदार है जहाँ पर हमनी के श्रोता लोगन हमनी के साथ देवा थवान तब बस इस पर करिए तनी आगे बढ़ाओ अब जा बढ़िया गीत जन चली रात के 11 बजे ले तो हमनी के साथ देते रहिए जा और हैजा पर शांति जी तेगूर से हमनी के साथ देवा थवान बहुत है प्यार से और ही दागोजिया के सब मराठी परिवार खातिन ओम खातिन ओम उनकर भगीना हवन अप दागोचा में हमेशा हमनी के साथ देवेलम अप दागोचा से और आज शांति जी बोले गिरीश रूपचंद के आवाज़ में रखल है अगला गीत तनी हमर खातिन बजा द है जिंदगी 4 दिन के तो तनी झूमा नाचा गाव काहे के त्राका करब त कौन चीज लेके जइबा हो और जैसन हमर चचा ह का बोलब चचा हमनी के

हमर चाचा के जोन पड़ोसी है ना मनोहर कौन दिन ऐसन तेरास पे बैठल रहल मुंह सड़ा के ऐसन मुंह लटका के बैठल रहल त चाचा हौजा से गुजरल चाचा बोले का हाल बा मनोहर भैया कैसे बोला था जब देखा तब तरा आका में का होल ऐसन मुंह लटका के कैसे बैठल हो कौन ची होल तब मनोहर भैया बोले हाँ भैया बड़ी तरह आका में चल आल हई को 5,000 रुपया के हमनी के जरूरत लगता चाचा तब फेरों से घूम के जाते जाते बोले हाँ रहे दा तराका में रहिए अच्छा बात तनी तनी तराका करे के चाहिला जीवन में

भोजपुरी तड़का आउरी ऐसन अंधार के रात में ला बुझी जला की बैठो हो नई पड़ी तो हरा उतना इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरे के पर अभी तक जितना ठंडा करता का बोला गर्मा गर्म चाय या काफी पिया आउरी मजेदार कार्यक्रम सुनते सुनते चले आगे बढ़ो अब सा आउरी बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम संगे हैजा पर हमनी के साथ देवधवन स्विट्जरलैंड से रंभा आउरी स्विट्जरलैंड के रंभा के बेटी जोन है मनीषा आज उनका जन्मदिन है सुदेश बोईजू के आवाज में रखल है अगला गीत के ऊ मांग कर ले बा आउरी खुशी होवन है गीत सुने के पीती पीती छोकरी जनाना तुरे जाला तो चला तरह खुश करब जा हाई बढ़िया गीत संगे औरी मनीषा के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हमार टीम देने से और आशा करब जा कि आज के दिन आने वाला हर पल तोहर खातिन बहुत बहुत प्यार से नीमन से बीती तोहर माता पिता के आशीर्वाद तोहर पर नीमन से बनल रही और तू जीवन में हमेशा आगे प्रगति कर पा तो चला हमार टीम देने से हाइये आशीर्वाद देवब जा तोहरा और इस संगे मिल के सुनब जा हाई अगला गीत तोहर खातिन और हाई है सुदेश बोईजू की आवाज़ में

भोजपुरी दड़का कार्यक्रम लाजवाब मरेज मजेदार कार्यक्रम है जहाँ पर रोज बेल से संजय जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और अगला गीत जो है विक्रम कोलाचन के आवाज में रखल धोती पोथी पगड़ी है गीत खासकर वीना जी खातिन श्वेता कृष्णा राधा और उनकर मामा हवन सुखविन और सब नीमचंद परिवार खातिन चलाओ अब जा तो चला है ये गीत के साथ मजेदार कार्यक्रम औरी चचा जी हमर जितना भोला हवन का बोलब कबो कबो नये समझेला जब ले नये बतैब जब ले नये समझैब नये समझेला कौन ची होवदा हम कौन दिन ओकर हियाँ एगो बिचारा दो दिन से भुखाल आदमी चल गल औरी लगल अपन दरवाजा खटखटावे तो चचा दरवाजा उघाड़ के देखा था कि एगो ऐसन फाटल लुगा में मारू लुगा में एगो भिखारी खड़ा हुआन तब लुग दरवाजा खोल के भिखारी के ताके के शुरू कर दिला तब बोला कौन ची होल तब भिखारी लगल रोवे जोर जोर से फूट फूट के रोवे शुरू कर दिलक तब जर रो के तनी तनी शांत पड़ल तो चाचा बोले हाँ अब बोल कौन ची होल बोले का बोला बाबूजी आज दो दिन से हम खाना नहीं खैले हई तो बोला अच्छा कोई बात नहीं जा दो दिन के बाद खा के फेरो से आइय अरे चचा दो दिन से खाए के नहीं मिलल भाव करा हवे से तो तोहर दरवाजा खटखटा हुआ था ना अब तू ओकरा बोला था जा के खा के आओ

0: नाचे भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे जारी रखत है और है जा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन चाची ललिता कुशल त्रियोले से बहुते प्यार से साथ देवत हवन और इस संगे हवन उनकर प्यारी बहिन सुदेवी सुदेवी जी के भी प्यार से बहुत मिसाज विदा है जा पर हो गल बातें और मिसाज विदा कर ले हवन अभी उनका अभी मिसाज पड़ब जा और हैजा पर चाची ललिता बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी छोटी दादी प्रभावती भाई आत्माराम भाई हरीश सुखलाल मौसी उषा लोकाना और माला राम जावन खाती नगला गीत के मांग करत हवन लागी ना ही छूटे राम और हैजे हैजा पर उनकर प्यारी बहिन सुदेवी वाकवा से हमनी के संगे जुड़ गल हवन बोले बहुत एंजॉय करत हवन है कार्यक्रम और बोले अगला गीत उनकर बहिन ललिता खातिन जे कुशल परिवार से हवन त्रियोले से मालेगा के राम रतन परिवार और खास कर वैभव वंश वीर वर्षा विमल और निया खातिन त चला चलाओ अब जा ये गीत उनकर सब परिवार खातिन और ये हंसते मुस्कुराते बस ऐसने साथ देते रहिए जा और चाचा हमनी के बोले जाने ल आई जोन आदमी लोग बोले लंस हमर बुढ़िया हमनी से बहुत प्यार करे लंस है सबसे बड़ा गलत फहमी है हम बोले का है चाचा ऐसे बोला था वह तब बोला था ना सच्चे के दिल से उनकर बुढ़िया ओकर बहुत प्यार करे लंस बोले हाँ है मनोहर जाने ल मनोहर हमनी के बोले हाँ उकर बुढ़िया ओकर से बहुत प्यार करे लन तो हम बोली तो छोड़ द अच्छा नहीं है एगो खुशियाल परिवार संगे रही बोले हाँ झूठे है सब झूठे है सब दिखावा है जो आदमी तोहर से आके बोली ओकर बुढ़िया ओकर से बहुत प्यार करता तो एक गो बात बोल दे बोल दे के चाहिला ओकरा बोली कौन बात बोले हाँ बुढ़िया प्यार करेला तोरा एक दिन खा के हाथ धो के वही हाथ एक दिन तोहर गिदोवा से पोछिया तनी मुँह पोछिया तू जान जाइब तोहर बुढ़िया तोहर से कितना प्यार करता का हो चाचा का सिखावत हवा है दुनिया के है सब जो राजो सुनत हवन है सब नौजवान के का सिखावत हवा

0: Mauritius.
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस.
0: रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस.
2: भोजपुरी तड़का.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का
4: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और लाजवाब मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर ढेर कोई हमनी के बहुत प्यार से जुड़ गल हवन तब बस हमनी के साथ देते रहिए जा और 4028085 पर तोहर टेलीफोन और साथ ही साथ में सास विदा करे खातिन 5251-7005। चला है जा पर 10:04 हो गल बा और कार्यक्रम के मजेदार गीत के संगे आगे बढ़ाओ। अब जा अगला गीत जो है पाद्या परिवार और दमिया परिवार खातिन है गीत के मांग करत हवन मीरा बाई। रोज बेल से वो भी साथ देवत हवन हमने के तो चला इसने साथ देते रहिए जा और साथ देते देते हैजा पर हमने के वो गीत मांगे बिजमावती संपत के आवाज में रखल गीत गवाई में और है गीत बहुत मजेदार गीत है और है गीत उनकर दमाद खातिन दबा दबी सुइया के लोपिताल में काम करत हवन तो बेटी और दमाद खातिन है ये गीत चलाओ। अब जा चला मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और साथ देते देते हंसते मुस्कुराते हम अपन जितना भी श्रोता लोगन हवन संगे संगे बस जुड़ल रहिए चुटकुला भी थोड़ा देर में तोरा सुनाओ। अब जा बहुत लाजवाब कार्यक्रम संगे

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला अगला गीत जो हईजा पर हमने के साथ संगे जुड़ गल हवन जयंती जी पेची जूली से साथ देवत हवन और हमने के साथ देवत हवन वाकवा बगल से भाई अबू संगे हवन आफेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर भगिनी हवन रकीबा रकीबा तनी अलाद हवन और भाई अबू उनकर खातिन बहुत बहुत दुआ करत हवन तो चला रकीबा तू अच्छा हो जाइबा और बस ऊपर वाला तोहरा बहुत बहुत शक्ति दे तो ये प्रार्थना करब जा हाइये आशा करब जा और हाइये दुआ करब जा तोहर खातिन और चला अगला गीत जो है मरमिट में चढ़ल बा गर्म पानी संतोष महादेव के आवाज में रखल हई अगला गीत और कौन दिन चाचा बैठल बैठल बोले जाने ल 1974 में फिल्म आल रहल रोटी हम बोली हाँ तो कौन सी होल बोले देखा 1974 में आल रोटी फिर 1982 में आल नमकीन फिर 1987 में फिल्म आल मिर्च मसाला और फिर 2005 में गरम मसाला 2006 में सैंडविच 2007 में चीनी कम 2008 में

में फिल्म चलाल भेजा फ्राई, 2009 में आलू चाट, 2010 में फिल्म चलाल खिचड़ी और ओकर बाद 2012 में कॉकटेल, 2012 बरिस में वही 2012 में बर्फी और 2014 में पिज्जा और इतना बरिस के बाद 2017 में फिल्म आल टॉयलेट, इतना बरिस के बाद पेट साफ।

0: भोजपुरी तड़का
1: 10:20 आउरी चला कल सोहेला और सुहेल के निकाह रही शाम के 4 बजे उनकर पापा फारूक और मामा हवन फरीदा और उनकर कजिन की ओर से उनकरा बहुत बहुत दुआ बहुत बहुत प्यार औरी चला सुहेला और सुहेल खातिर एगो बढ़िया गीत खोज के आनले हैं सुग्रीम किस्तु के आवाज में रखल है गीत जब दुल्हा राजा चलावेला त दुल्हन के दिल धक धक डूब डूब करेलन सा तो चला हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सा औरी चिंटू औरी पप्पू के बात त सुनते चला कोन दिन पप्पू के जुन मास्टर जी रहल अध्यापक रहल पप्पू के बोले पप्पू तू काहे काल पाठशाला नहीं आल तो पप्पू बोले हाँ पाप गुरुजी जाने ल हमनी के नींद लगल और नींद में हम जाना था वह हमनी के सपना पड़ल कि हम ता अमेरिका चल गल है तो मास्टर जी बोले हाँ तो पप्पू तू नहीं आल तो चिंटू तू काहे नहीं आल बोले मास्टर जी वो अमेरिका गल ना तो हम ओकरा एयरपोर्ट छोड़े गल रही हाइये से हमनी के नहीं हम बहुत देरी हो गई ला हमनी के आई के

कुणाल बाबूलाल की आवाज में रखल है ये चलाओ अब जा रतन खातिन और उनकर पत्नी हवन करुणा गांव गोप से साथ देवत हवन और नया सिरे के है गीत बहुत एक खुशी हवन सुने के त लाजवाब गीत के संगे संगे चले आगे बढ़ब सा और हैजा पर 10:27 हो गल बा और 11 बजे चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और जरूर जे तोहर मन में कोनो गीत बजता कोनो गीत सुने के तोरा मन करता तो 11 बजे हैजे हाँ और 11 बजे तोहर गीत चलावे के हम पूरा कोशिश करब दाज चला आगे बढ़ब सा नया सिरे के है गीत और नया सिरे है बहुत लाजवाब गीत एगो समय रहल जब है गीत बहुत प्रचलित होल रहल तो चला है गीत सुनब जा और का बोलब चचा के नहीं पर पप्पू के किस्सा पप्पू कौन दिन जब पाठशाला गल तब मास्टर जी बोले पप्पू के अच्छा बच्चा लोग हमने के हाई बतावा भैंस काहे पूंछ हिलावेला तो पप्पू फट से हाथ अपन ठड़ा कर देलक तो मास्टर जी बहुत खुश हो गल कि पप्पू आजकल बहुत प्रश्न के उत्तर देवत हवन बोले अरे वाह पप्पू ठड़ा हो जा ठड़ा होके जवाब द तो पप्पू ठड़ा होके बोले हाँ मास्टर जी फेरों से बोला था सवाल बोले हाँ बेटा बोला हाई जोन भैंस है वो काहे पूंछ हिलावेला तो पप्पू अपन कपार खजवाइते खजवाइते बोले मास्टर जी वो काहे पूंछ हिलावेला जाने ला कहे के पूंछ है ना वो भैंस के ना हिलावे सके वही से वो भैंस पूंछ हिलावेला वो टंटा उठा के मलक मास्टर जी

0: देखा जिंदगी में कबो कोनो प्रॉब्लम चला आई तो नया सिरे से फेरो से शुरुआत करियो और जन कुछो नहीं बुझाई तो रोज रात के 9 बजे से 11 बजे ले चलेला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुनते रहिए और मजेदार गीत संगे अपन जो दिल है तनी हल्लुक हो जाए और खुशहाली के साथ आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावत हई 10:32 हो गल बा
1: भोजपुरी तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे जुड़ल रहिए
1: भोजपुरी तड़का
0: और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला है जहाँ पर 10:33 हो गल बा श्याम रघुनंदन हमनी के संगे जुड़ गल हवन गाँव गो बगल से उनकर भैया जय प्रकाश भौजी अवन नम्रता केशव और युधीश संगे उनकर दूगो सखी वीना रामफल और विश्वानी दुकी जी हमनी के हमेशा साथ देवेलन और साथ ही साथ हैजा पर नीता खेदनी जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन सैन जुलिया विलास से सब खेदनी परिवार संगे और खास दोस्त हवन स्वाधिका जी तो चला अगला गीत जो है लागिना ही छूटे राम के है गीत करब जा उनकर खातिन बहुते मजेदार गीत

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हंसते मुस्कुराते चला आगे बढ़ो अब सा और ये अगला गीत जो है खास कर चलाओ अब जा राजन लक्ष्मण जी खातिर उनकर पत्नी के जन्मदिन रहल 10 तारीख के माला जी जन्मदिन के बहुत बहुत तरह बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलब जा और माला जी खातिर अगला गीत चलाओ अब जा चल दिन तो चले गल जैसे बोलब तारदे हो है गल बाते पर हमर ओर से तोहर खातिर एक बार फिर उसे जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार से बधाई देवब जा उनकर दू गो बेटी प्रार्थना और प्रगति और ननन हवन मानती और भगिनी हवन उर्मिला तुलसी और सब लक्ष्मण परिवार की ओर से तोहर खातिर माला जी जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और का बोलब जा हमर जोन चचा हवन चचा गजोधर उ तो जाने ल कबो कबो ऐसन ऐसन बात बोल देवे लन स कि का बोलब जाने ल चचा कौन दिन बोले जे वाइफ के हिंदी में ग्रहणी बोलल जाला तो हिंदी में हस्बैंड के कौन ची बोलल जाला तो चाची चमेली फट से बोले

भोजपुरी तड़का 11 बजे ले चलता भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और चला अगला गीत जो संभावती दुमन के आवाज में रखल है गीत चलाओ अब जा जितना सुने होला श्रोता लोगन हवन उन सब कोई खातिन और चचा कबो कबो कहाँ से मूड चलावेला का जानी ऐसे ऐसे शायरी करेलन स हमनी के बोले जाने ल अरज करत हई दोस्ती रही कि प्यार दोस्ती रही कि प्यार गहरा होना चाहिए हम बोले वाह वाह चचा वाह का बोलत हवा दोस्ती है रही कि प्यार वो गहरा होना चाहिए आउरी तहर बुढ़िया जे रही लड़ाकिन तब बुढ़वा बहरा होना चाहिए का चचा ऐसन छह ऐसन शायरी करल जा रहा हो

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला है जहाँ पर युधिष हमने के संगीत जुड़ गल हवन और युधिष भी बहुत खुशियाली के साथ हमने के साथ देवत हवन तो चला अगला गीत करब जाऊन कर खातीन और ये है जहाँ पर 10:52 हो गल बा उमेश दाऊ के आवाज में रखल अगला गीत चलाव जा और ये हमर चचा के तब कांड करे लंस का बोलब हो जाने ल टिकटॉक पे हर कलिते के जाफे हर कलिते के चीज देखते रहे लंस आउरी फेसबुक पे आउरी का जन यूट्यूब पे देखते रहे लंस आउरी हाउ जाने ल गोरा होए खातिर एगो टिप ओकरा मिल गल आदमी बोले कि हई जोन चार हो ओकरा उबाल के ओकर लापात बना के तोहर चेहरा पे जे लगेब तनी गोरा हो जाइब आउरी चचा उसने कलक हाउ चार जोन रहल चावल के दाल के पका के उबाल के गरम गरम चार के हज लगा देलक अपन चेहरा पे अरे फोका फोका बड़ा हो गल ऐसे मुआ सूज गल तो हम बोली चाचा कैसे हो गल है बोले हाँ हम चार गरम गरम लगा के उबाल के है बोले लापात बना के अपन चेहरा पे लगाइब तो गोरा हो जाइब हम बोलनी चाचा ओकरा ठंडा हो दे के बाद में लगावे के का हो चाचा सब कुछ देख के अपन चेहरा के तसतिया नाश कर दिलक है देख फोका फोका सब चलाल तोहर चेहरा पे समझे के चाहिला हो चाचा सब सब जोन चीज लौकेला उ नहीं करे के बीमार हो जाए बापू नारिय के हाई देखा हाई गीत वा मजेदार सुना उमेश दाऊ के आवाज में चला इसी गीत संगे आज के कार्यक्रम के हईजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा आशा करब जा के आज के दिन आज के हई गीतवा हई आज के हई कार्यक्रम तोरा अच्छा बुझाल और ऐसने आवत सामदी के फेरों से भेटा आपसे एगो बढ़िया और एगो मजेदार कार्यक्रम संगे तब बस अपन ख्याल रखिए पूरा पूरा ध्यान रखिए और आवत समय तोहर खातिन बहुत बहुत ऊर्जा के संगे शुरू रही और बस काल त दिमास के दिन है दिमास तोहर परिवार संगे एगो बढ़िया दिन बीतिए जिंदगी बहुत हसीन है जबरदस्त है तो बस अपन ख्याल रखिए और इसी संग एकर संगे हमनी के अनुमति दीजिए।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: श्रोताओ, नीतुषा आपके समक्ष रेडियो मॉरिशस की लहरों पर एक बार फिर आप सबका अभिवादन, स्वागत सुनहरे पल कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसी कलाकारा के बारे में बात करेंगे जो खूबसूरती, मासूमियत और मोहब्बत की एक अमर दास्तान कही जाती है। आप हैं सायरा बानू, साथ निभाते रहिएगा सुनहरे पल कार्यक्रम में।

0: की सबसे हसीन और नाजुक अदाओं वाली अभिनेत्रियों का जिक्र होता है तब सायरा बानू का नाम बड़े ही अदब और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। उनकी मुस्कान में एक बचपना था, उनकी आंखों में मासूमियत थी और उनकी अदाओं में एक ऐसी शराफत जिसे देखकर हर कोई उनका दीवाना बन जाता था। सायरा बानू ने सिर्फ अपनी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि अपनी नेचुरल एक्टिंग और दिल से निभाए हुए किरदारों के जरिए भी बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई।
1: दीवा!

मीरा बानू का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ। उनकी माँ अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री थी, इसलिए बचपन से ही पढ़ाई के लिए वो लंदन भी गई, जहाँ उन्होंने दुनिया को एक नए नजरिए से देखा। वापस भारत लौटने के बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और देखते ही देखते दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गई। उनकी पहली फिल्म जंगली थी, जिसमें उनके साथ नजर आए, जिसमें शम्मी कपूर उनके साथ नजर आए। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात एक बड़ी स्टार बना दिया। एहसान तेरा होगा मुझ पर या फिर जा जा जा मेरे बचपन जैसे गीत आज भी उनकी मासूमियत और अदाओं की याद दिला देते हैं। इसके बाद सायरा बानू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

1960s और 1970s के दशक में उन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया और सबसे बढ़कर के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। पड़ोसन, पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203, शागिर्द, आई मिलन की बेला और गोपी जैसे कई फिल्मों में उन्होंने अपनी रेंज और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

बानो की एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर किरदार को बहुत ही स्वाभाविक अंदाज में निभाती थी, चाहे एक शरारती लड़की का रोल हो, एक भोला भाला रोमांटिक किरदार हो या एक संवेदनशील पत्नी का। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी नेचुरल होती थी कि दर्शक तुरंत उनसे जुड़ जाते थे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक अलग ही रोशनी थी जो हर सीन को यादगार बना देती थी।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: क्या है?
2: घर चलो, भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
1: तुम बीच में मत बोलो।

0: मीरा बानो की जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय था उनका और दिलीप कुमार साहब का रिश्ता। बचपन से ही सायरा बानो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी प्रशंसक रही। उन्होंने एक सपना देखा था कि अगर कभी शादी करेंगे तो सिर्फ दिलीप कुमार से। किस्मत ने भी उनका साथ दिया और 1966 में दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों की उम्र में काफी अंतर था, लेकिन उनके प्यार, सम्मान और भरोसे ने इस बात को कभी मायने नहीं रखने दिया।
1: प्यार मोहब्बत के सिवा

0: मदहोश हूँ मैं और होश नहीं, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: कुछ तू ही बता दे जोरा जबी, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: पहलू में रहे तुम सा हंसी, अब क्या होगा
1: क्या होगा,
0: हो जाऊँ ना मैं दीवाना कहीं, अब क्या होगा।

शादी के बाद सारा बानू एक सरल अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि दिलीप कुमार की सबसे बड़ी ताकत, दोस्त और जीवन साथी बन गई। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में दिलीप साहब का हाथ थामे रखा। जब उनकी तबीयत खराब रहती थी, तब सायरा बानू ने दिन रात उनकी देखभाल की और अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा और खुशी के नाम कर दी। उनकी ये वफादारी और समर्पण हर किसी के लिए एक मिसाल बनी।

दिलीप कुमार के निधन के बाद सायरा बानू ने उनकी दुनिया, उनकी यादों को बड़े प्यार और सम्मान के साथ संभाल कर रखा है। वो अक्सर उनके बारे में प्यारी यादें साझा करती हैं और उनकी विरासत को जिंदा रखती हैं। ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, बल्कि दो ऐसे इंसानों का था जिन्होंने मोहब्बत, इज्जत और समर्पण का

असली मतलब दुनिया को दिखाया। आज भी जब सायरा बानू का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक खूबसूरत हीरोइन की याद नहीं आती, बल्कि एक ऐसी शख्सियत याद आती है जिन्होंने ग्लैमर के साथ संस्कार, सादगी, वफादारी और इंसानियत को भी उतनी ही अहमियत दी। उनका फिल्मी सफर और उनकी व्यक्तिगत जिंदगी दोनों ही नए कलाकारों और हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सायरा बानू हिंदी सिनेमा की उस सुनहरी पीढ़ी की निशानी है जहां कला के साथ तहजीब भी हुआ करती थी, जहां स्टारडम के साथ विनम्रता भी होती थी और जहां मोहब्बत सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी पूरी ईमानदारी से निभाई जाती थी। इसलिए सायरा बानू का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा बड़ी सम्मान और प्यार के साथ अमर रहेगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: ए कुत्ते, इडियट, हाँ तेरी तो एक चाटा मार के ना तेरा मुंह सुझा दूंगी मैं।

ठहरे तू नहीं मानेगा।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: Chalo Roy America.
2: Do you have time for a pleasant experience?
1: Chalo Roy America.
3: Oh, Tau Ram Ram. Hey, band kar. Hey, bola na, band kar. Hey, good evening, folks. Myself, Bhai Saab Tyagi from Meerut. Now I will rock with my desi lutt. हमारा बैंड का इंट्रोडक्शन भी सुन ले। जय आनंद प्रकाश, जय बजाया करे ढोल, और जय किशन लाल बिच्छू, जय बड़ी चीज बजाया करे भाई, और बाकी है गा चोरस, जय रबड़ी इमरती, नाम ना बता, ये पप्पू की अम्मा है। चलो रे शुरू हो जाओ, इब मैं सुनाता हूँ अमेरिका का हिप हॉप। जय माता दी,
4: लेट्स रॉक।

0: एबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: हेलो हेलो हेलो साहिबा कदरदान,
2: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
3: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।